हिस्से में काम आएगा नाप तोल का एडजस्टिंग पावर रीडिंग ग्लासेस। ये आता है एडजस्टिंग पावर के साथ, जो प्लस 0.5 से प्लस 2.5 तक की पावर के बीच आसानी से एडजस्ट हो जाता है। मतलब आपकी पावर चाहे थोड़ी बढ़े या घट जाए, ये एक ही चश्मा काफी है। नया चश्मा बनवाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। डिजाइन की बात करें तो इसका जैकवार्ड डिजाइन और रिमलेस लुक इसे स्टाइलिश बनाता है, और वजन में हल्का होने की वजह से इसे पूरे दिन पहने दबाव बिल्कुल महसूस नहीं होगा। इसमें दिए गए फ्लेक्सिबल हिंजेस ज्यादा से ज्यादा आराम देते हैं, और ये हर चेहरे पर आसानी से सूट हो जाता है। ये चश्मा

FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी समाचारों के लिए हम चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, तत्पश्चात हम सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कीजिए क्वेश्चन प्रतीक्षा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक

0: थ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी ना करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार महापुरुषों का चित्त समृद्धि के समय पुष्प के समान कोमल हो जाता है, किंतु वही चित्त संकट के समय पर्वत शिला के समान सुदृढ़ हो जाता है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 197। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। इसका पहला भाग आज प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहम, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूले बिसरे गीत सुबह 7 से 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शेफाली शाह पर। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी। संपादन सहयोग काजल भद्रकी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 और रात्रि 11 सुनेगा चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम मैटनी शो। दिन में 12 से हिंदी समाचार, 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। सुरीला सफर ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 से, दोपहर 2 से त्रिवेणी, दोपहर 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे।

दोपहर 3 बजे से मनचाहे गीत दोपहर 2:30 से सुनिएगा नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक विजय माल, लेखन रवि शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत अभिनेता लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुन सकेंगे, संपादक सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छायागीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनवाएंगे आपको तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, शाम 7 बजे से आपको सुनवाएंगे विशेष जयमाला, ये प्रस्तुत कर रही हैं अभिनेत्री नरगिस, इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा, रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा सुनो कहानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र का 4वां भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चितलोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से, और 10 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम छाया गीत, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, रात 10:10 से आपको सुनाएंगे ढलती जाए रात।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 197।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। श्रोताओं, आज की संगीत सरिता कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: दोस्तों नमस्कार, और संगीत सरिता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के रागों के बारे में रोचक बातें आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आज का विषय है राग अमृतवर्षिणी। अमृतवर्षिणी का मतलब हुआ अमृत की धारा या वर्षा। जब देश में सूखा पड़ जाए और पेड़ पौधे और खेत सब सूख रहे हों, तब अगर बारिश होने लगे तो उस वर्षा को अमृत ही कहना उचित है, क्योंकि वर्षा से पेड़ पौधे पुनः जीवित हो उठते हैं। अमृतवर्षिणी राग द्वारा ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है। श्रोताओं, आपको याद होगा कि तानसेन के बारे में भी ऐसी ही एक कहानी प्रचलित है। तानसेन ने दीपक राग गाकर ज्वाला उत्पन्न किया था और उस आग को बुझाने के लिए मेघराग को गाना पड़ा। बिल्कुल उसी तरह कर्नाटक संगीत के एक महान वाग्यकार और कंपोजर मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने भी अमृतवर्षिणी राग गाकर वर्षा उत्पन्न की थी, ऐसा कहते हैं। यह घटना

करीब 200 वर्ष पहले की है, जब त्यागराजर और दीक्षितर जीवित थे। कहा जाता है कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर एक बार दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में एट्टायपुरम से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि पूरे प्रांत में सूखा था और खेत सब मुरझा गए थे। लोग भूख से पीड़ित थे और पानी की कमी थी, और इस हालत को देखकर दीक्षितर को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने उसी क्षण सफ़र में ही संस्कृत भाषा में एक कृति की रचना की, जिसके शब्द हैं आनंदामृत कृषिणी अमृतवर्षिणी हरादि पूजिते शिवे भवानी, मतलब भवानी की प्रशंसा में है। इस कृति में देवी भवानी का वर्णन है और कृति के अंतिम पंक्ति के बोल हैं अमृतेश्वरी सलिलम वर्षय वर्षय वर्षय, अर्थात देवी पानी बरसाओ बरसाओ बरसाओ। इस रचना को गाते ही आकाश में न जाने कहीं से घने बादल घिराए और सलिलम वर्षय वर्षय कहते ही जोर से बारिश होने लगी। लोग अत्यंत खुश हुए और उनकी वेदना भी दूर हो गई, खेतों में पानी भर गया। राग अमृत वर्षिणी का परिचय अब देती हूँ। यह एक औड़व औड़व राग है, अर्थात आरोह अवरोह में पांच स्वर लगते हैं। इस प्रकार

स्वर हैं शुद्ध गांधार, तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद। यह राग चित्रांबरी नाम का 67वां मेलकर्ता का जन्य है। राग सीधा साधा, सरल और अत्यंत लोकप्रिय है और विस्तार भी आसानी से हो सकता है। इसे एक आधुनिक या मॉडर्न राग कह सकते हैं क्योंकि यह करीब 200 वर्षों से ही प्रचलित है। इस राग में बहुत कम बंदिशें मिलते हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध कृति दीक्षितर द्वारा रचित आनंदामृता कृष्णी है। तो अब सुनिए अमृतवर्षिणी राग में इस कृति को, जो आदि ताल में निबद्ध है।

अब सुनिए, इसी राग को आधुनिक पद्धति में फ्लूट पर पेश किया गया है। जैसे मैं कह रही थी कि ये आधुनिक राग है, प्राचीन राग नहीं है। तो अमृतवर्षिणी राग को सुनिए, बांसुरी पर कलाकार हैं

0: संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। इसे प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। कल इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप सुनेंगे हमारे इसी संगीत सरिता कार्यक्रम में।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।

0: कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। इसे प्रस्तुत कर रही है शकुंतला नरसिम्मन। कल इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप सुनेंगे हमारे इसी संगीत सरिता कार्यक्रम में।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज़ों में पतंगा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।
1: रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

आइए अब सुना जाए राजा मेहंदी अली खां का लिखा और एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है गीता दत्त की, फिल्म का नाम दो भाई।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं दर्द फिल्म का ये गीत।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए सुने लाहौर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में लाहौर फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे श्याम सुंदर। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं नूरजहां की आवाज़ में जुगनू फिल्म का ये गाना।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश राजकुमारी की आवाज़ में महल फिल्म से। गीतकार हैं नक्शब जारजवी और संगीतकार हैं खेमचंद प्रकाश।

FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम नमस्ते रोहतास प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत होगी सुविचार से और फिर हम सुनेंगे आज का इतिहास, स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मौसम पूर्वानुमान, समाचार पत्रों की सुर्खियाँ, फिल्मी नगमे और विज्ञापन। तो करते हैं शुरुआत आज के सुविचार से। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वो स्वयं को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।

अब रुख करेंगे आज की देश दुनिया के इतिहास के पन्नों पर। प्राग का डिफेंशन की घटना घटी थी जिसने 30 साल के युद्ध की शुरुआत की थी। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और 1984 में आज के दिन बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और आज के दिन 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 3.0 को लॉन्च किया था।

अब आइए एक नज़र डालें प्रमुख हस्तियों के जन्म पर। 1934 में आज के दिन मशहूर भारतीय उद्योगपति और गोदरेज समूह के चेयरमैन आदि गोदरेज का जन्म आज के दिन हुआ। 1997 में भारतीय दक्षिण अभिनेत्री विद्या पलाट का जन्म आज के दिन हुआ और 1915 में भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता पी सुब्रयन का जन्म हुआ।

से अलविदा कह गए। 1921 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार रास बिहारी बोस के करीबी शांचीनंद नंदनाथ सान्याल का निधन आज के ही दिन हुआ था।

तो ये थे इतिहास के पन्ने और अब रुख करेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। मैं सदफ आपके साथ FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। बार बार बिजली कटने से चिनारी में जनजीवन प्रभावित। भीषण गर्मी में बिजली ट्रिपिंग से लोग बेहाल। लो वोल्टेज ने बढ़ाई मुश्किलें। भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली ट्रिपिंग ने प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरवासियों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तेज़ धूप और उमस भरी गर्मी के बीच बार बार बिजली कटने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

सासाराम रेलवे स्टेशन का सर्विस इम्प्रूवमेंट ग्रुप ने किया निरीक्षण। सासाराम रेलवे स्टेशन का शुक्रवार को डीओ मंडल के सर्विस इम्प्रूवमेंट ग्रुप ने निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व मुख्य वाणिज्य प्रबंधक यात्री सेवा दिलीप कुमार ने किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, स्वच्छता पर प्रकाश डाला।

6 अंचलों में निबंधन के बाद 28% म्यूटेशन रद्द हो चुके हैं। आवासीय, गैर आवासीय, कृषि योग्य या फिर व्यावसायिक जीव जमीन के टुकड़ों का निबंधन हर रोज हो रहा है। निबंधन के बाद म्यूटेशन के लिए संबंधित अंचलों में केस दर्ज किए गए हैं ताकि भूमि पर राजस्व निर्धारित की जा सके। स्कूलों की दीवारों पर अंकित होगा विभाग का टोल फ्री नंबर। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में प्रदर्शिता और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने रोहतास जिले सहित पूरे राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मुख्य दीवार पर शिक्षा विभाग के कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम का टोल फ्री नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाने का निर्देश जारी किया है।

और ज़िले में भीषण गर्मी, लू और हीट वेव को देखते हुए डीएम ने जारी किए आदेश। कैमूर में 12वीं तक के सभी स्कूल 30 मई तक बंद हैं। कैमूर में भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए कैमूर ज़िले के सभी सरकारी स्कूल 12वीं तक के सभी स्कूल 30 मई तक शैक्षणिक गतिविधियां एवं प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि 30 मई तक बंद रहेंगे।

और शेरशाह सूरी महोत्सव के दौरान गायक कुमार सत्यम ने सूफी गीतों एवं गज़लों की प्रस्तुति देखकर माहौल को पूरी तरह संगीतमय बना दिया था। पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन रोहतास के संयुक्त तत्वाधान में सासाराम शहर स्थित फजलगंज स्टेडियम में आयोजित शेरशाह महोत्सव में शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म की प्रदर्शनता हुई। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उपस्थित लोगों को शेरशाह सूरी के प्रशासनिक कौशल, न्यायप्रियता, सड़क निर्माण, डाक व्यवस्था एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से अवगत कराया गया।

तो ये थी स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अब रुख करेंगे मौसम पूर्वानुमान की ओर। भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 20 से 24 मई के दौरान जिले आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। जिले में हीट वेव चलने की संभावना है। अधिकतम 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह से 50 से 60 प्रतिशत तक, दोपहर में 15 से 20 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि 8-10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। अब रुख करते हैं एक फिल्मी नगमे की ओर, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: आज मेरे प्रोग्राम का आखिरी दिन है। मैंने दो मर्तबा हीर ही गाई है। अगर
1: श्रोता हम सुने थे आखिरी खत फिल्म का ये सॉन्ग लता मंगेशकर की आवाज़, खयाम का संगीत और बोल थे कैफे आजमी के। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते रोहतास, प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम सदफ के साथ। आइए रुख करते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। स्टूडियो में कुछ समाचार पत्र हम मौजूद हैं, जिसमें है दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर। सभी समाचार पत्रों ने ये सुर्खियाँ बनाई है। 5 साल में 1 लाख शिक्षक बहाल होंगे, हर साल 20,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जुलाई में आएगा, सम्राट चौधरी। बिहार में शिक्षक बहाली और शिक्षा व्यवस्था की सूरत बदलने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर दांव खेला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अब बहाली के लिए शिक्षकों को सालों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। शुक्रवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ख़ास बात यह है कि अब नियुक्तियों में होने वाली देरी को ख़त्म करने के लिए हर साल जुलाई के महीने में वैकेंसी निकालने का एक अस्थाई कैलेंडर तय कर दिया गया है।

बदलेगा शिक्षा का पूरा इकोसिस्टम। बिहार सरकार का ये फैसला सिर्फ नौकरियों का आंकड़ा नहीं है बल्कि एक व्यापक सिस्टम सुधार की ओर बढ़ता कदम है। हर साल जुलाई में वैकेंसी का कैलेंडर जारी होगा। भारतीय भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमितता लगाई जाएगी। CBI 12वीं 17.68 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, मार्किंग में लापरवाही देखिए। पहली बार 3 घंटे में 7% छात्र ही री एवेल्यूशन को आए और फिर आंकड़े देना बंद। वैसे कुल 3% आते थे। री एवेल्यूशन की अंतिम तारीख अब 24 मई तक कर दी गई है। नीट फिजिक्स पेपर लीक, CBSE ने पुणे की लेक्चरर मनीषा को किया गिरफ्तार। फिजिक्स पेपर लीक मामले में पुणे की लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंसी ने उन्हें पेपर लीक का एक और स्रोत बताया है। हवलदार ने पुणे के सेठ हीरालाल सराफ स्कूल में कार्यरत हैं।

उसी के मुताबिक हवलदार को NTA ने नीट UGC प्रक्रिया में विशेषज्ञ के दौरान शामिल किया था। सुर्खियों में आज है सासाराम CEO 3 लाख घूस लेते धराए। जिले के सासाराम में शुक्रवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कुछ ही घंटों के अंतराल पर 2 कार्यालय गिरफ्तार में छापामारी कर सदर CEO व उनके सहयोगी और सिविल सर्जन कार्यालय के एक लिपिक और रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीम ने सासाराम सदर CEO आकाश कुमार रैनियार और उनके सहयोगी सोनू कुमार को 3 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। निगरानी DSP पवन कुमार ने बताया कि अशोक कुमार नामक आवेदक की जमीन परिमार्जन के मामले में CEO ने राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार के माध्यम से 8 लाख रुपये की मांग की थी। माता व पिता IAS तो आरक्षण क्यों, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने क्रीमी लेयर और आरक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को पिछड़े वर्गों के भीतर आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से उन्नत परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ लगातार दिए जाने पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वला भुइया की पीठ ने अगर माता पिता शिक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं तो खासकर दोनों IAS अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। अब रुख करेंगे स्पोर्ट्स की ओर। प्रभात खबर लिखते हैं कि रोमांचक हुई प्लेऑफ की जंग, अब एक सीट के लिए 4 दावेदार हैं। चौथी सीट के लिए राजस्थान सबसे आगे है। पंजाब किंग्स उम्मीद बरकरार बनाए हुए हैं और KKR के लिए करो या मरो की स्थिति है। दिल्ली को चाहिए चमत्कार। करो या मरो मैच में पंजाब का खेल बिगाड़ सकती है लखनऊ की टीम। पहले 6 जीत फिर 6 हार, आज हारे तो सफर होगा खत्म। पंजाब को प्लेऑफ की उम्मीद जीवंत रहने के लिए लखनऊ पर बड़ी जीत की ज़रूरत है।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: संदेश से पहले हम सुन रहे थे आंधी फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की दिलकश आवाज थी। संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने और गीत के तर्ज लिखे थे गुलजार ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। नमस्ते रोहतास के सफ़र में आगे बढ़ते हैं और कारोबार की तरफ रुख करते हैं। पिछले साल के 2.59 लाख करोड़ के लाभांश में से 6.7% अधिक RBI 2025 से 2026 के लिए सरकार को देगा 2.86 लाख करोड़ का लाभांश। SBI ने हड़ताल से पहले ग्राहकों को दी वैकल्पिक माध्यम से लेन देन की सलाह। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अगले सप्ताह 25 से 26 मई को कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए अपने ग्राहकों को वैकल्पिक माध्यम से लेन देन करने की शुक्रवार को सलाह दी। SBI ने अपने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे नकदी निकासी के लिए ATM ग्राहक सेवा केंद्रों का उपयोग करें और बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग मंच यूनो एवं UPI जैसे सेवाओं को प्राथमिकता दें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिक्री पेशकश को संस्थागत निवेशकों से दुगना बोलियां मिली। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार की 4% हिस्सेदारी के लिए बिक्री पेशकश को संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 2,380 करोड़ रुपए से अधिक बोलियां मिली। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकार 8% तक हिस्सेदारी 31 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेच रही है। तो ये थी जानकारी बिजनेस प्रभात की। इसी के साथ कार्यक्रम नमस्ते रोहतास का ये सफ़र अब यहीं संपन्न हुआ। दीजिए इजाज़त सदफ को।

0: पटना केंद्र है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है। बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं, तो बैठे क्यों हो? अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के

0: साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
6: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में

0: लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्रिषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्रिषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से

0: खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अभी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की आठवीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में आठ बजकर 15 मिनट हुए हैं और हम पेश कर रहे हैं देशभक्ति गीत।

0: और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले।
1: चुप क्यों हो गए, और सुनाओ।

श्रोता हम देशभक्ति गीत में सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में। ये गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से हमने लिया था। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और गीत के मूल इंदिवर के थे।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पसंद आपके, कीजिए कबूल सदफ़ का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम पेश कर रहे हैं आपके लिए एक दिलकश नगमा आपकी फरमाइश पर। वक्त बदलते हैं और हालात बदल जाते हैं, पर दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, अगर वो सच्चा हो तो।

दोस्तों, हम सुने थे याना फिल्म से ये सॉन्ग। किशोर कुमार की आवाज़, संगीत राजेश रोशन और गीत केबल अनजान के। और इस नगमे के लिए आपने फरमाइश की, आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। और इसी सॉन्ग के लिए आपने अपनी फरमाइश की, आपने ख़त लिखा दुबिहा नवेदा गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। अब सुनते हैं एक और गीत।

से हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों हम सुन रहे थे यादों की बारात फिल्म से, सॉन्ग आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें थी, संगीत RD बर्मन का और गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के। इस वक्त स्टूडियो में 8:34:36 हुए हैं, सुबह का वक्त है और सुन रहे हैं कार्यक्रम पसंद आपकी, आपकी फरमाइशों पर आधारित सदफ़ के साथ। इस नगमे की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता थे, आप हैं गोकुल चौक गंगाजल सहरसा से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, राजेश रंजन विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, बुल्कीवाला फलनाजा, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी आर्थव कुमार, रंजय कुमार परदेसी। और इसी सॉन्ग के लिए आपने खत लिखा, आप हैं ताजपुर मोरबा से भाई करी यारकारी, श्रीमती मोनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रो मिश्रा, डोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है, वरना दोस्ती मोहब्बत से कम नहीं होती।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: दोस्तों हम सुन रहे थे याराना फिल्म से, ये सॉन्ग किशोर कुमार की आवाज़ थी, संगीत दिया था राजेश रोशन ने और गीत के बोल अनजान के थे और फरमाइशें आप सभी की थी। ख़त लिखा आपने नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम बहू रुबीना वसीम बाबू आरिज वसीम नवासा अरहान बाबू नवासा हमजा बाबू नवासा मुजम्मिल बाबू नवासी हुमैरा नाज नवासी सुमैरा नाज नाज नवासी आबिहा शाजिया शाहिन नाज नाजिया नूरी नाज बच्चू शेख चीना शेख कोकिलवारा अरिया ज़िला मुजफ्फरपुर से फैसल शेख नुजर जहाँ नाज शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शाह नवाज परवेज और मुसर जहाँ नाज इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहाँ डब्लू अकरम नूरजहाँ वली अकरम नूरजहाँ लाह अकरम नूरजहाँ राजनंदगांव से याकूब आसमा यासूफ आसमा इमरान आसमा और इरफान आसमा जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी सोनम तिवारी अदीबा तिवारी तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है जब तुम गरीब हो और वो तुमसे बेशुमार मोहब्बत करे।

श्रोता, हम सुने थे साजन फिल्म का ये सॉन्ग, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ें, नदीम श्रवण का संगीत और गीत के बोल समीर के। इस नगमे की ख्वाहिशमंद आपने खत लिखा पुटानी चौक नरन स्टेट से। भाई फटफटिया जा, उदय कान ठाकुर, रमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। इसी के साथ ये सॉन्ग अब यहीं कंप्लीट हुआ। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: AIR at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर साल जुलाई में जारी होगा विज्ञापन, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की, दूध के मूल्य में 2 से

0: 3 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि। और प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में, रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नीति बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों को गृह जिले के अपने प्रखंड की गृह पंचायत के बगल की पंचायत में स्थानांतरित किया जाए, वहीं पुरुष शिक्षकों का गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद TRE4 को लेकर संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों के आकलन के बाद इस संबंध में फिर से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी।
2: जुलाई महीने में TRE4 की वैकेंसी आ जाएगी, तो TRE4 पर स्थिति स्पष्ट हो गई। विद्यालयों में जितने भी हमारे लिए स्वीकृत पद है और जो आज शिक्षक हैं, कहीं ज्यादा हैं कहीं कम हैं, उसका पूरा एक सप्ताह के अंदर हमारे विभाग के अधिकारियों को CM साहब ने निर्देशित किया है कि पूरा इसको रेशनलाइजेशन करके और निकालिए कि अभी कितनी आवश्यकता है, और उसके आधार पर हम अधियाचना फिर भेजेंगे। एक तो न्यूनतम हो गया कि 20,000, यदि ज्यादा आवश्यकता होगी तो ज्यादा भेज।
0: बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत सभी दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दूध के मूल्य में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की वृद्धि की गई है। सुधा गोल्ड की कीमत प्रति लीटर 65 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए कर दी गई है। सुधा स्टैंडर्ड दूध 57 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं गाय दूध 54 रुपए से बढ़कर 57 रुपए और टी स्पेशल 50 रुपए से बढ़कर 52 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कॉम्फेड ने पनीर, दही, घी, मक्खन और मिठाइयों की कीमतों में भी वृद्धि की है। बढ़ी हुई दरें 25 मई से प्रभावी होगी। साथ ही कॉम्फेड ने किसानों को प्रति लीटर दूध में 2 से 3 रुपए 13 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। खुदरा विक्रेताओं के लिए दूध के मुनाफे में 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता और पाकिस्तान से आतंकी संपर्क के आरोप में मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव से मोहम्मद मुस्तफा नामक युवक को गिरफ्तार किया है। ATS के ADG पंकज दारात ने बताया कि आरोप

0: के पास से बरामद डिजिटल साक्ष्यों से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की साजिश का खुलासा हुआ।
1: इन पे मुख्य रूप से यह आरोप है कि एक सज्जाद भट्टी पाकिस्तान बेस्ड एक गैंगस्टर है जो कि इंडिया में अपने हैंडलर्स के थ्रू इंडिया में जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हैं उनको अपना सोल्जर बनाना चाहता है। सज्जाद भट्टी का एक हैंडलर है राणा हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है, तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार।
0: बिहार में अपराध की बदौलत संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। एडीजी विधि व्यवस्था सुधांशु कुमार ने बताया कि अब तक 1433 अपराधियों की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इनमें 428 की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर और तुरकोलिया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में पिछले महीने जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत के मामले में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 14 मद्य निषेध पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के बाद मद्य निषेध उपायुक्त दरभंगा की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड स्थित सिसवर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पुलिस कर्मियों ने मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इधर केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी देने के मामले में नालंदा जिले के लहेरी से 1 युवक की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है जिन्हें एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: कहाँ चलती है इधर तो आओ।
3: इधर आइए इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का टेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कैमूर का अधिकतम तापमान 44.2, गया का 42.4 और बक्सर का 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। यहां का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, पटना, गया और बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।
6: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने

0: की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: इधर सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के मंडल टोला में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार

0: विधायक संजय सराफ की और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक उमेश सिंह कुशवाहा समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा की बिहार इकाई की ओर से आज से पटना में 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। प्रशिक्षण महाभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 642 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले शिक्षकों के अप्रैल और मई महीने का वेतन भुगतान किया जाएगा। सिवान के जिलाधिकारी ने 90 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। ये सभी जांच के क्रम में अपने कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। आरा जंक्शन पर ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले थे। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के रामकृष्णा नगर स्थित एक गोदाम से 95 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवा बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर और गोदाम कर्मी को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल थाना क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन में लगे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के सरिसब पाही स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के पास अपराधियों ने एक युवक से 1,40,000 रुपए लूट लिए। पश्चिम चंपारण जिले के कोबरथना और ठकराहा थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी, 5 वर्षों में 1,00,000 नियुक्तियां। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर वर्ष जुलाई में आएगा विज्ञापन। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, माता पिता IAS तो आरक्षण क्यों। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेब पर बोझ, 1 लीटर सुधा गोल्ड 3 रुपए और 200 ग्राम पनीर 10 रुपए महंगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में 10 और IAS अधिकारियों का तबादला। आज अखबार लिखता है, जीविका दीदियों को इसी महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर साल जुलाई में जारी होगा विज्ञापन, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की, दूध के मूल्य में 2 से 3 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि। और प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में, रोहतास के टेहरी का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:05 हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की एक झलक पर।

अब से बस कुछ ही पलों में यानी 9:10 पर हम सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका। नौ बजकर 30 मिनट पर विविध भारती के कार्यक्रम और 10 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति। 10:05 पर आप सुनेंगे विकास की सोपान। स्टूडियो की प्रस्तुति संचालन लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। 10:30 पर कार्यक्रम लोक माधुरी के अंतर्गत आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीत और 10:45 पर कार्यक्रम रसथार। 11 बजे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। 12 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 12:05 पर विविध भारती के कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती की गीत माला। 2 बजे प्रादेशिक समाचार और 2:05 पर इलाकाई खबरें आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले। 2:10 पर रोजगार सूचना। 2:15 पर माध्यान्ह समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति और 5:05 पर कार्यक्रम उद्घोषणा। 5:10 पर आप सुनेंगे वंदन। 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी। 6 बजे भोजपुरी लोकगीत। 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन समाचार और 6:10 पर कार्यक्रम किसान वाणी। 6:40 पर समाचार सांझ की भोजपुरी फिल्म संगीत और 7 बजे भोजपुरी कार्यक्रम ममता का आंचल। 7:15 पर आप सुनेंगे गुड इवनिंग रोहतास सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। 7:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

7:50 पर हेलो मनपसंद फोन इन कार्यक्रम रिकॉर्डिंग समय हर बुधवार प्रातः 11 से 12 बजे तक। फ़ोन संख्या 0618422130। फ़ोन संख्या 0618422130। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे लोकधारा भोजपुरी लोकगीत और 9:15 पर गज़लों के कार्यक्रम महफिल सजेगी और 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार विविध भारती के अंतर्गत और 10 बजे रसरंग में हम सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग। 10:30 पर कार्यक्रम चित्रपट तराने और 10:55 पर अगले दिन का कार्यक्रम विवरण एवं मौसम पूर्वानुमान। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हो चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए कार्यक्रम गीत मलिका। गीत मलिका में हम सुनेंगे कुछ हिंदी फिल्मी गाने, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले इस फिल्म का ये सॉन्ग, कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़, नदीम श्रवण का संगीत और बोल समीर के, और फिल्म है दीवाना।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला। आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: श्रोताओं सुन रहे थे दीवाना फिल्म से सोम कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ थी। नदीम श्रवण का संगीत और बोल समीर के। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मलिका। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, भाई सुनते हैं एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हिट स्टोरी 4 से। दुबिन नौत्याल और अमृता सिंह की आवाज़ें, तनिष्क बागची का संगीत है और गीत के बोल मनोज मंतशिर के।

इसी के साथ कार्यक्रम गीत मालिका का ये सफर अब यहीं संपन्न हुआ। दीजिए इजाज़त सदफ को। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हो चुके हैं और हम रुख करेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर।

0: महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई, और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज ओटीटी की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली शाह।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थीं। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

0: दीवाना हो।
1: शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थी। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10

वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका मिली।

ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका

शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्यालय की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आई। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घाइवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी। ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by Neena Rakel.
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टोरी की घड़ी में सुबह के 10:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र सासाराम में स्थित वार्ड नंबर 2 के मुहल्ला करमडिहरी के बारे में। सासाराम नगर निगम कार्यालय से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है करमडिहरी। पहले यह उचितपुर ग्राम पंचायत का भाग था, लेकिन सासाराम नगर निगम बनने के बाद यह नगर निगम के वार्ड नंबर 2 का भाग हो गया है। लगभग 150 घरों की बस्ती में रहने वाले अधिकांश लोगों की जीविकोपार्जन का साधन मजदूरी एवं कृषि है। करमडिहरी तक पहुंचने के लिए सासाराम आरा रोड में स्थित लालगंज से पूरब तरफ जाने वाली सड़क सुविधाजनक है। करमडिहरी से पहले सासाराम आरा रेलवे क्रॉसिंग पार करना पड़ता है। वहीं पास में ही एक प्राथमिक विद्यालय भी है जहां बच्चे पढ़ते हैं। करमडिहरी में गली नाली पक्की दिखाई पड़ी, बिजली के पोल पर कवर्ड तार देखने को मिला। श्रोताओं, ये तो रही नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मुहल्ला करमडिहरी की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला, लेकिन वास्तव में वहाँ विकास की क्या स्थिति है, नाली गली पेयजल शिक्षा स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधा के बारे में मुहल्ला वासियों का क्या कहना है, सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहां रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है, इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया करमडिहरी के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मुहल्ला करमडिहरी में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, आज हम सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 अंतर्गत करमडिहरी में उपस्थित हैं और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर विकास की क्या स्थिति है, सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है। तो आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। जी, आप अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका?
1: पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा शुभ नाम हुआ गुप्तेश्वर सिंह, पूर्व मुखिया उचितपुर पंचायत। अभी हम लोग नगर निगम सासाराम में आ गए हैं, वार्ड नंबर 2 है। यहाँ अभी तक शिक्षा के मामला में मात्र एक विद्यालय है, वो भी बच्चे के बैठने लायक नहीं है, छोटा पड़ जा रहा है। दूसरा चीज, जब से रेलवे यहाँ आया तो हम लोग का शिक्षा तो बाधित हुआ। वहाँ बच्चे को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो जाएगा। और रह गया कि यहाँ नली गली का बात है, तो नली तो बहुत पुराना हमारे रीजन में बना हुआ है, कभी काल आते हैं सफाई कर्मी, कुछ चुनिंदा रोडों को बहार कर और साफ करके चले जाते हैं। कृषि प्रधान गांव है, यहाँ 90% लोग कृषि पर आधारित हैं। यहाँ सबसे बड़ा पेयजल की और किसानों की समस्या है। तो आज सरकार ने क्या किया है कि बहुत से किसानों को जो पेंशन मिलता है उनका किसान का लाभ हटा दिया है, जो किसान का लाभ मिलता है तो राशन कार्ड हटा दिया। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उसमें क्या हुआ है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो निचले स्तर के हैं, मजदूर हैं, वो राशन के लिए तरस गए हैं, उनका भी कार्ड बंद है। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को बिहार सरकार के पास या भारत सरकार के पास रखा जाए।
0: जी, इसकी जांच होनी चाहिए। आप ये बताइए गुप्तेश्वर जी कि पेयजल की समस्या हर जगह रहती है, आपके मोहल्ला में पेयजल की क्या स्थिति है? सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर नल जल, तो इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए।
1: आज जो 45 से लेकर 48-50 डिग्री तापक्रम है, उसमें हमारे वार्ड में खासकर 2 नंबर वार्ड में पेयजल की सुविधा बढ़ी है। जिसके घर में नल जल गया उसके लिए पानी उपलब्ध हो रहा है, समय से चल रहा है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ,
0: पानी मिल रहा है,
1: पानी मिल रहा है। अब रह गया बिजली, बिजली भी हमारे यहाँ ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं है, समय से बिजली आती है।
0: बिजली में सरकार इस समय छूट दे रही है, वह मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को?

0: अब तो बिजली का छूट दे रही है। जो पहले कंज्यूमर थे, जो 10,000 से 20,000 रुपया गरीब गुरबा थे, उस समय से नहीं भर पाए, उनका सूद बाई सूद बढ़ा कर 40 से 50 हो गया है, तो उनका इंटरेस्ट आएगा तो पता कहाँ चलेगा कि हमको कम मिल रहा है कि ज्यादा
1: लगातार चल रहा है सर। ना एक चाहिए कैंप, तो ऐसा बार बार लगता है समय पर।
0: कैंप लगा, लोग गए, लेकिन इसका निदान नहीं हुआ। गरीब दौड़ नहीं पाएगा, वो मजदूरी करने जाएगा कि आप बिजली विभाग के ऑफिस दौड़ेगा। मैं इसको चाहूंगा कि जेई हो चाहे एसडीओ साहब हो, सासाराम ब्लॉक के, इस पे ज्यादा विशेष।
1: अच्छा, एक चीज और बताइए, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग होंगे जो निडी होंगे, जिनका घर नहीं है, कॉलोनी सरकार की तरफ से दी जाती है, यहाँ कुछ लोगों को मिला है कि नहीं?
0: यहाँ तो कॉलोनी के मामला में वार्ड नंबर 2 फर्स्ट पर चल रहा है, जो है उचित तो सत्य है। और सोचे कुछ लोग कि 100 में 100 कर्म ढेरी को मिल जाए, तो ये संभव चीज नहीं है। अगला टर्न में आएगा, अभी समस्या है कुछ लोगों को नहीं मिला है, तो अगला टर्न में मिलेगा। राशन तो बहुत बड़ी समस्या है, उसका प्रूफ मैं हूँ। मेरा 1 कट्ठा भी जमीन कहीं नहीं है, मेरा राशन कार्ड बंद हो गया।
1: जो भी प्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि राशन की किसे आवश्यकता है उन्हें मिलना चाहिए। जी धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: हमारा राम नारायण बैठा नाम है।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: करमडीरी का।
1: जी, क्या करते हैं आप?
2: हम मजदूर काम करते हैं।
1: जी, ये तो नगर निगम क्षेत्र हो गया है। क्या स्थिति है करमडीरी के?
2: सब ठीक है।
1: नाली गली?
2: नाली गली यही है कि हमारा घर तरफ नल जल नहीं गया है। दूसरा, अगला बार में हमारा 4 गो भाई है, कोई आदमी का हम लोग का कॉलोनी नहीं मिला है। ना हम लोग अमीर है, ना 1 कट्ठा घर का खेत है, ना कुछ भी है।
1: नहीं मिली है आपको?
2: नहीं मिला है, यही हमको बस दिक्कत का बात है।
1: बाकी गांव की स्थिति तो ठीक है ना? जो मोहल्ला की स्थिति,
2: सब सब सब सुखी है। हाँ,
1: आपको समस्या है कि कॉलोनी नहीं मिली है। हाँ, और इस पर ध्यान देना चाहिए जो जनप्रतिनिधि है।
2: हाँ, ध्यान देना चाहिए,
1: किसकी आवश्यकता है।
2: हाँ, और नल जल नहीं गया है।
1: जी धन्यवाद, आइए एक युवा से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
3: जी मेरा नाम पड़ेगा शुभम कुमार सिन्हा, मेरे पिताजी का नाम पड़ेगा रविनाथ प्रसाद सिन्हा, करमडीहरी का निवासी हैं।
1: करमडीहरी जो कि अब नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 2 में हो गया है।
3: हाँ,
1: ये बताइए अभी क्या स्थिति है करमडीहरी के?
3: करमडीहरी का अभी स्थिति विकास में बहुत बढ़िया चल रहा है। एक समस्या है राशन का और स्कूल का, वही थोड़ा दिक्कत में है। सरकार से मेरा निवेदन है वो ध्यान दे।
1: आप करते क्या हैं?
3: पढ़ाई लिखाई करते हैं, 12th मेरा इस बार निकल चुका है, फाइनल हो गया है, इस बार बीए में एडमिशन लिया है।
1: करमडीहरी में सरकारी विद्यालय है ना?
3: हाँ जी हाँ।
1: क्या स्थिति है वो विद्यालय?
3: उस विद्यालय में अभी कुछ स्थिति सही नहीं है, बच्चे बैठते हैं।
1: कितने कमरे हैं वहाँ पर?
3: उसमें कम से कम 5 क्लास तक बस है, उसके बाद बस।
1: कमरा कितना है?
3: कमरा 3 या 4।
1: तो बैठने की अभी व्यवस्था बढ़िया नहीं है अभी आज के समय में?
3: ना उतना बढ़िया, बच्चा मतलब नहीं बैठ पाते है बच्चा।
1: पीने वाला पानी आपके यहाँ आता है कि नहीं?
3: हाँ जी सर, टाइम टू टाइम आता है।
1: अच्छा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए कि आपके घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो 60 साल या उससे ऊपर के हों, जिन्हें वृद्ध पेंशन योजना या कोई अन्य योजना का लाभ मिलता हो?
3: हाँ जी, मेरी दादी हैं, पेंशन मिलता है,
1: पेंशन योजना। बिजली में छूट सरकार दे रही है, उसका लाभ आपको मिलता है कि नहीं अब घर?
3: हाँ जी हाँ, 125 यूनिट मिलता है लाभ।
1: बिजली जाती है बढ़िया?
3: जी हाँ, 24 घंटा में से भी कदर कट जाता है बिजली।
1: अच्छा, कृषि के लिए जमीन वगैरह भी आपके घर में?
3: जी हाँ।
1: तो कृषि सम्मान निधि सरकार की तरफ से 6,000 रुपए मिलते हैं, 2,000 करके 3 बार, वह मिलता है?
3: जी हाँ मिलता है।
1: मतलब योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है?
3: जी हाँ है, धीरे धीरे करमडीहरी विकास कर रहा है।
1: जी धन्यवाद, श्रोताओं अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
4: हमारा नाम प्रमोद कुमार पड़ता है, अधिवक्ता है।
1: अधिवक्ता है और करमडीहरी के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 2 में ये है। क्या स्थिति है अभी करमडीहरी की विकास के मामले में?
4: विकास के मामले में तो अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
1: नाली गली सब कंप्लीट है?
4: देखिए नाली गली जितना में है उतना में ठीक है, साफ सफाई होता ही रहता है, कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है।
1: नगर निगम क्षेत्र हो जाने के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं? सफाई की, झाड़ू लगने वाली?
4: हाँ, उस सारी सुविधाएं मिल रही है
1: जी।
4: सफाई लगभग रोज लोग आता है, करता है, झाड़ू वाड़ू लगाता है।
1: पीने वाला पानी मिलता है कि नहीं?
4: देखिए पेयजल समय पर मिलता है, उधर वाला तो बंदे है, इधर वाला थोड़ा चालू रहता है।
1: यहाँ पर 2 है?
4: 2 है, तो एक तो बंदे रहता है।
1: यहाँ ज्यादा लोग करते क्या है, कार्य क्या करते हैं?
4: देखिए यहाँ के ज्यादा लोग हैं, शिक्षा के मैटर में कम है, अशिक्षित लोग हैं, ज्यादातर मेहनते मजदूरी लोग करता है।
1: कृषि कार्य भी करते होंगे?
4: कृषि कार्य करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं।
1: कृषि कार्य करते हैं तो कृषि के लिए पानी की सुविधा मिलती है बढ़िया ढंग से?
4: देखिए सिंचाई विभाग के तरफ से तो नहर वहर का व्यवस्था है, माइनर का व्यवस्था है, फर्स्ट पतन हम ही के गाँव से होता है, उसके बाद ही पानी नीचे जाता है। हाँ, तो पानी का व्यवस्था तो लगभग हम लोग की तरफ बहुत

0: रहता है।
1: अच्छा, ये बताइए कि सरकारी योजनाओं का लाभ आपको, आपके परिवार के कुछ लोगों को मिल रहा है कि नहीं?
0: मिला है सरकारी लाभ में, जैसे कि राशन कार्ड भी है।
1: राशन कार्ड है
0: हाँ, कॉलोनी भी एक ठो मिला हुआ है।
1: बहुत अच्छी बात है कि योजनाएं जिसके लिए होती है उसको वहां तक पहुंचे।
0: देखिए, हमारा जो गांव है ना, गरीब की संख्या यहां ज्यादा है, खेतिहर लोग भी हैं, लेकिन वही 2-4-5 बीघा है, उसी में अपना जिया का समझिए।
1: पहले तो ये ग्राम पंचायत था उचितपुर, लेकिन अब तो नगर निगम क्षेत्र हो जाने के बाद इसे मोहल्ला का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन फिर भी इसे आप गांव ही कह रहे हैं।
0: और अभी तक तो गांव ही चलेगा। देखिए, एक सामाजिक माहौल होता है, अगर 10 जगह के लोग यहां आकर के घर बनाते तो उनका माहौल एक शहरी टाइप का होता। हम लोग बचपन से पैदाइशी इसी गांव में है, तो हम लोग हर घर के बच्चा बच्चा को जानते हैं, तो हम लोग हर जब भी कहेंगे तो अपने गाँव को ही गाँव ही कहेंगे, भले ही मोहल्ला का रूप ले ले।
1: राशन कार्ड की आपने बात बताई, राशन कार्ड वालों को आयुष्मान कार्ड भी बनता है, बनवाए हैं?
0: जी, आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं सरकार की तरफ से, व्यवस्था आया था यहीं पर, लोग बनवा।
1: अच्छा, पेंशन योजना का लाभ कोई आपके घर में सदस्यों को मिलता है?
0: देखिए, पेंशन योजना तो नहीं मिलता है क्योंकि अभी तक एज नहीं हो पाया।
1: और रही बात कॉलोनी की बात आपने बताई, मिला था आप?
0: जी, चूंकि हम तो रहते थे कराकट डाल करके
1: जी,
0: तो आए सब वार्ड वो लोग देखे कि नहीं आपको जरूरी है जी, तो हमको लोग एक दिया था, अभी एक पेमेंट दिया, बाकी पेमेंट अभी बाकी है।
1: अच्छा, अभी तत्काल में मिला हुआ?
0: जी, तत्काल की बात
1: जी। तो अभी विकास के मामले में ठीक आपका गाँव है?
0: ठीक है, शिक्षा के माहौल में थोड़ा कम है
1: जी। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला करमडिहरी के कुछ और लोगों से की गई बातचीत हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पूर्व सुनवाते हैं आपको एक गीत मन्ना डे की आवाज़ में। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, और फिल्म है सफ़र।

0: इस गीत के बाद आइए चलते हैं लोगों के बीच।
1: श्रोताओं, आज हमारी बात हो रही है सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 स्थित करमडीहरी के लोगों से, और जान रहे हैं यहाँ पर हुए विकास कार्यों के बारे में। श्रोताओं, आइए एक बुजुर्ग से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम है सरजूराम।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: करमडीहरी का।
1: नगर निगम वार्ड नंबर 2 में पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे करमडीहरी के बारे में?
2: करमडीहरी के बारे में चाहेंगे पेंशन मिलते बा सर, नल जल मिलते बा।
1: पेंशन मिलती है?
2: हाँ, बूढ़ा पेंशन मिलता है। अच्छा, जिसको नहीं बना है उसको नहीं मिलता।
1: अच्छा, कॉलोनी मिली है कि नहीं आपको?
2: ना, हमको कॉलोनी नहीं मिली।
1: तो कॉलोनी सबको नहीं मिलती है, उसी को मिलती है जिसका घर नहीं होता है, जो उसके पात्र होते हैं, क्योंकि हर योजना के लिए कुछ पात्रता रखी गई है। तो पहले से आपका घर है ना?
2: घर है
1: जी। तो चलिए पेंशन योजना का लाभ लेते हैं। आप करते क्या हैं?
2: ये खेती बाड़ी के काम बा।
1: उम्र तो आपकी काफी हो गई होगी?
2: उम्र हमारे भी 70 हो गया है।
1: 70 हो गई है। बच्चे क्या करते हैं?
2: बच्चे तो एक मिस्त्री काम करता है, मजदूरी करता है
1: जी। घर में पानी मिलता है? पेयजल की सुविधा है कि नहीं?
2: पानी नहीं मिलता है।
1: पेयजल की सुविधा नहीं है अभी?
2: ना।
1: पानी नहीं जाता है आपके तरफ?
2: ना, हमारे तरफ पानी नहीं जाता है।
1: राशन कार्ड है ना?
2: राशन कार्ड हमारा औरत के नाम से था, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है।
1: क्या दिक्कत हो गई?
2: अब दिक्कत हुई, हमारा राशन कार्ड बंद हो गया। क्या कहला के है, प्रधानमंत्री योजना से कौन तो मिल बा पैसा।
1: अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं तो वो बंद कर दिया गया।
2: हाँ।
1: ये कुछ समस्याएं लोगों के साथ हो रही है जिनका थोड़ा सा भी जमीन है। हाँ। तो वो बंद कर दिया गया।
2: लड़का के दरोगा नाम है जी, उसी का नाम से मिलता है।
1: तो अभी करमडीहरी की स्थिति तो ठीक है ना? नाली गली, बिजली।
2: हाँ, बिजली का
1: जी। धन्यवाद। अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम रामजी पांडे है
1: जी। कहाँ के रहने वाले हैं?
3: करमडीहरी का,
1: जो कि नगर निगम क्षेत्र।
3: हाँ,
1: हो गया है अब।
3: नगर निगम के अंतर्गत आता है वार्ड।
1: तो ये बताइए कि अभी करमडीहरी की क्या स्थिति है, विकास के मामले में क्या है, नाली गली बिजली?
3: अच्छा, नाली गली तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बिजली का स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ तहाँ वायर जो है टूटा हुआ है, पुराना है। रिपेयरिंग करना बहुत सख्त जरूरी है, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकता है।
1: कवर्ड तार आपके यहाँ ना?
3: कवर्ड है, लेकिन वो कार्बन करते करते वो कमजोर हो चुका है।
1: अच्छा, ये बताइए कि बिजली में सरकार की तरफ से कुछ छूट मिल रही है लोगों को, 125 यूनिट, वह आपको मिल रहा है कि नहीं?
3: हाँ, लाभ हमको मिल रहा है।
1: यहाँ पर नाली गली ठीक है?
3: नाली गली ठीक है। अब जनता जनार्दन इसको देख रेख न करे तो अलग की बात है।
1: सफाई हो रही है ना?
3: हाँ, सफाई हो रही है, क्योंकि 8 दिन 10 दिन पे कर्मचारी आकर सफाई करता है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये जो नली बना हुआ है, आगे ले जाकर लोग छोड़ दिया है, सारा गांव का पानी जब जाता है तो ओवरफ्लो करने लगता है रोड पे, खेत में।
1: मतलब इसका कहीं जो गिरना चाहिए वहाँ जगह
3: अभी नहीं पहुँचा है जी।
1: अच्छा, गर्मी का समय है, यहाँ आप लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं?
3: बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि दो जो बोरिंग किया हुआ है सरकारी बोरिंग, एक तो बिल्कुल मरणावस्था में है, कभी पानी नहीं मिलता है।
1: एक उधर दक्षिण तरफ में, उधर तो लोग बता रहे हैं कि लगातार मिल रहा है।
3: हाँ, वो दक्षिण तरफ जो है वो पानी सप्लाई करता है,
1: उत्तर तरफ का
3: बिल्कुल
1: बंद है।
3: हाँ,
1: मतलब पेयजल का लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है, रहने वाले
3: जी जी ना, वो बंद पड़ा हुआ है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है।
1: अच्छा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए कि सरकार के तरफ से कई योजनाएं चलती हैं, जैसे कृषि सम्मान निधि योजना है, जो खेत है उसको 6,000 रुपए आते हैं, 2,000 करके
3: जी जी,
1: वो सब मिल रहा है कि नहीं?
3: बिल्कुल मिल रहा है।
1: मिल रहा है?
3: मिल रहा है।
1: कोई घर में वृद्ध सदस्य जो कि 60 साल से ऊपर हो, पेंशन योजना का लाभ?
3: माता जी हैं, माता जी को तो मिल रहा है, लेकिन हमको भी नहीं मिल रहा।
1: आपका 60 साल हो चुका है?
3: हाँ, 60 साल हो चुका है।
1: तो देखिए, अब हो चुका तो फॉर्म भरना पड़ता है, भरने के बाद तो निश्चित ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
3: हाँ, वो तो फॉर्म भरना पड़ेगा।
1: पात्र

0: हो जाने के बाद तो योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बताइए कि यहाँ रहने वाले कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें कॉलोनी वगैरह मिली होगी, आपके नज़र में है कि लोगों को यहाँ पर कॉलोनी मिली हुई है?
1: गरीब तबका के जो लोग हैं उनको तो कॉलोनी मिला हुआ है।
0: अच्छा, माने योजनाएं लोगों तक पहुँच रही?
1: पहुँच रही, बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा तरीका से पहुँच रहा है
0: जी
1: कि पहले की अपेक्षा बहुत
0: बहुत बढ़िया। हाँ, शिक्षा के मामले में क्या स्थिति है बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय?
1: पहले की अपेक्षा तो बहुत सुंदर है,
0: लेकिन लोग अपनी मानसिकता को चेंज करें कि हमें सरकारी विद्यालय में पढ़ाना है बच्चों को, तो निश्चित है जो वहाँ पर शिक्षक हैं उनका सदुपयोग हो पाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने में बच्चों की भलाई है। जितना बोझ पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, प्राइवेट सिर्फ व्यवसाय के रूप में चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है।
0: देखिए, सरकार भी इस पर ध्यान दी है, अभी प्राइवेट विद्यालयों में जो री एडमिशन की प्रक्रिया है, पुनर्नामांकन की, इस पर सरकार रोक लगाई है। तो ये सब चीज तो है कि प्राइवेट विद्यालय में कहीं ज्यादा लोगों को खर्च करना पड़ता है।
1: सच्चाई है सर, फीस पर कंट्रोल होना चाहिए।
0: जी धन्यवाद। आइए एक और व्यक्ति से मिलते हैं, इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: गौरी शंकर पांडे।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: करमडीही का।
0: नगर निगम क्षेत्र हो गया है
2: जी।
0: वार्ड नंबर
2: 2।
0: अभी जो करमडीहरी में विकास की स्थिति है उस पर क्या आपकी राय है?
2: सब ठीक है मिला जुला कर
0: जी।
2: बिजली का दिक्कत है, तार 11,000 डैमेज है, कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है, ट्रांसफार्मर तेल चू रहा है।
0: कुछ लोगों को पेयजल मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। आपका इधर घर है, क्या स्थिति है?
2: जल नहीं मिल रहा है, जल नहीं चलता है।
0: सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ आपको, आपके परिवार के सदस्यों को कुछ मिल रहा है?
2: हाँ, मामी को पेंशन मिलता है।
0: कृषि सम्मान निधि योजना?
2: नहीं, सब नहीं है।
0: क्या कारण है कि नहीं है?
2: कारण है कि खेत में नाम से नहीं।
0: अच्छा, बंटवारा नहीं हुआ है, इसके चलते आप लोगों के साथ दिक्कत हो रही है। ये कई जगह समस्याएं हो रही है। और राशन कार्ड वगैरह
2: मिलता है
0: जी?
2: हाँ, राशन मिलता है।
0: राशन कार्ड वालों को आयुष्मान कार्ड भी बनवाएगा?
2: आयुष्मान कार्ड है
0: जी। धन्यवाद। श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला करमडीहरी के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला करमडीहरी में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हों, या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपने लिखा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन 821115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisasaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। हम सुनेंगे कार्यक्रम लोक माधुरी के अंतर्गत भोजपुरी एल्बम लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोक माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत भोजपुरी एल्बम लोकगीत। अब भाई सुनते हैं अगला लोकगीत शारदा शर्मा के स्वर में,

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम लोकगीत का ये सफ़र अब यहीं संपन्न हुआ। माधुरी, लोक माधुरी में हम सुन रहे थे ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। अब आइए सुनते हैं रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग।

0: धनंजय और शिल्पी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये रसधार कार्यक्रम। ये सॉन्ग भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का ये सफ़र अब यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं और हम रुख करेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की जय कुशन प्रतीक्षा।
1: मेरा स्नेहिल अभिवादन।

जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली। इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
0: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मद

ग्यावस थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो।

मैटिनी शो के इस ताजा तरीन अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आज के इस अंक को लेकर

0: दोस्तों, फिल्मी दुनिया में फिल्मी पर्दे पर फिल्मी गीतकारों ने हमारे आभूषणों पर बहुत सारे गीत लिखे और नायिकाओं को वो आभूषण पहनाकर हमें बहुत ही आनंदित किया है ना। तो ऐसा ही एक आभूषण है झुमका। जी हाँ, झुमका, जिस पर हमारे फिल्मी यानी यूं कहीं फिल्मकारों ने और फिल्मी गीतकारों ने बहुत सारे गीत लिखे और पर्दे पर फिल्माए। तो आज उन्हीं गीतों को लेकर हमने इस मैटिनी शो को आपके लिए चुना है। जी हाँ, झुमका। झुमका शब्द आते ही कितने सारे गीत आपके कानों में गूंज गए होंगे ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और मैं जाने ऐसे कितने सारे गीत। जी हाँ, तो झुमका एक आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक भी है। कानों में झूमते हुए और छन छन की आवाज करते हुए ये सुंदर झुमके हर पहनावे की शोभा बढ़ा देते हैं। तो आज मैटिनी शो में ये झुमके कहर ढाने वाले हैं।
1: है किसी का झुमका

जी हाँ, मिला है किसी का झुमका। तो ये झुमका मिला था फिल्म परख में और आवाज लता मंगेशकर ने दी थी, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था सलिल चौधरी ने। अब जब बात झुमकों की चली है तो ये तय है कि आपने एक झुमके के बारे में जरूर सोचा है। वही गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो जाहिर है जब झुमका बरेली के बाजार में गिरा होगा तो फिर उस बाजार में जाकर हम झुमका जरूर खरीदेंगे। तो आप भी बरेली के बाजारों से झुमका खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वहां कई खास डिजाइन के झुमके हमें मिल जाते हैं। अगर हम फिल्मी इतिहास की बात करें तो झुमका गिरा रे गाने ने बरेली के झुमकों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया था, है ना। और ये गाना 1966 की फिल्म थी मेरा साया, अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया ये गीत था। और सच पूछा जाए तो ये झुमके आमतौर पर जो बरेली के झुमके हैं काफी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी मीनाकारी मोती और कुंदन के काम के

पेश किए जाते हैं और यहाँ के झुमके देखने में जितने बड़े, भारी और आकर्षक होते हैं ना, असल में उनका वजन बहुत हल्का होता है। और कारीगर इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि भारी डिजाइन वाले झुमके भी कानों में चुभे बिना आराम से पहने जा सके। तो चलिए खरीदते हैं ये बरेली का झुमका।

जी, तो मदन मोहन के संगीत निर्देशन में ये था राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आशा भोसले की आवाज थी और ये फिल्म थी मेरा साया। बहुत सारी फिल्मों में झुमकों पर काफी कुछ लिखा गया है, फिल्माया गया है। और झुमकों की जो दुनिया है ना दोस्तों, भारत की तरह ही विविधतापूर्ण है। हाँ, जहां हर क्षेत्र अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल से इन सदाबहार झुमकों को एक नया आयाम देता है। चाहे आपको बड़े सुनहरे झुमकों की भव्यता पसंद हो या स्टड झुमकों की सादगी भरी खूबसूरती, हर पसंद और अवसर के लिए एक न एक डिजाइन मौजूद रहता है। जैसे जैसे फैशन के रुझान बदलते हैं, वैसे वैसे फैशन की प्राथमिकताएं भी विकसित होती रहती हैं और हमारी रुचि भी पनपती रहती है। हाँ, एक बात स्थिर रहती है, वो क्या? वो ये कि नारीत्व, संस्कृति और परंपरा के प्रतीक के रूप में झुमकों का जो आकर्षण है वो हमेशा नारी के मन में बना रहता है। और जब हम झुमका शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्लासिक घंटी के आकार के, आमतौर पे सोने चांदी या बारीक कारीगरी से भरपूर झुमके याद आते हैं। और आजकल तो बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल झुमके भी हमें मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो कोई भी झुमका

निगाहों ने मार डाला, होए होए धूप है चंदा, जुल्फ है फंदा, बंदा बेहाल है, हाथ में छल्ला, सर पर पल्ला।

मेरे बिन दिल का ये बंगला पड़ा है सोना, ये बंगला पड़ा है सोना, मेरे बिन दिल का।

जी हाँ, ये गीत फिल्म पायलट ऑफिसर से हमने लिया था और सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने इसे गाया था। आनंद बख्शी के बोल थे, रोशन की धुन थी। तो बात चल रही है आज झुमकों पर, और झुमके तो कई तरह के डिजाइन और स्टाइल में आते हैं और हर मौके और आउटफिट के अनुसार चुने भी जाते हैं। जब बात स्त्री की आती है, औरत की पसंद की आती है, तो नारी इन झुमकों को हमेशा प्राथमिकता देती है। और ट्रेंडी झुमके बहुत तरह के बाजार में हमें मिलते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं और अपने कहना चाहिए आउटफिट में धारण कर सकते हैं। जैसे चांद वाली झुमका, ये चांद के आकार का होता है और इसके नीचे सुंदर घुंघरू या मोतियां लटकी होती हैं। साड़ी या लहंगे के साथ ये बहुत अच्छा लग सकता है। टेम्पल झुमका, ये साउथ इंडियन स्टाइल के झुमके होते हैं जिन पर देवी देवताओं या पारंपरिक आकृतियों की नक्काशी भी होती है। एक मीनाकारी झुमका है जिन पर रंग बिरंगे फूल और डिजाइन की पेंटिंग या नक्काशी की जाती है। एक आता है लेयर्ड झुमका, इनमें एक के नीचे एक कई परतें, लेयर्स या घंटियां लगी होती हैं और एक भारी और भरा हुआ लुक देती हैं। कुंदन और पोलकी झुमके भी आते हैं और ये राजस्थानी और मुगल स्टाइल के शाही झुमके होते हैं जिनमें कीमती पत्थर और रत्नों का काम होता है। इसके अलावा मल्टी चेन झुमका, इसमें झुमके के साथ एक चेन जुड़ी होती है जो कान के ऊपरी हिस्से में पिन हो जाती है, जिससे कानों को एक भारी लुक भी मिलता है और कानों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा डेलीवियर झुमके, जिन्हें आप रोजमर्रा के काम में पहन सकते हैं। अगर आप हल्का और छोटा झुमका पसंद करती हैं तो

रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छे होते हैं झुमके, और मोती झुमका यानी पर्ल ये क्लासी होता है और एलिगेंट होते हैं, जिनमें सफेद या रंगीन मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत तरह के झुमके बाजार में मिलते हैं, ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह की डिजाइन इन झुमकों में पसंद है। पर हाँ, देखिए ना, आपको चाहे कोई भी झुमका पसंद हो, लिखने वाले ने यानी फिल्मी गीतकार ने झुमकों के बारे में बहुत खूब लिख दिया है।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: दोस्तों, हमारी फिल्मों में, हमारे फिल्मी गानों में हमारी संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। हमें हर गहने पर कई फिल्मी गीत सुनने को मिलते हैं, पैरों से लेकर सिर तक न जाने कितने महत्वपूर्ण अलंकारों पर हमारे गीतकारों ने गीत लिखे हैं। अब देखिए ना, हम बात कर रहे हैं झुमके की, साथ ही अगर हम बात करें पैरों में पहने जाने वाली चांदी की पायल की, तो ये भी एक लोकप्रिय आभूषण है जिस पर काफी गीत लिखे गए हैं। नहीं नहीं, हम आपको पायल से संबंधित कोई भी गीत नहीं सुनवा रहे फिलहाल, तो हम आपके लिए आज झुमका ही लेकर आए हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि कितने सारे अलंकारों पर हमारे फिल्मी गीतकारों ने इन गीतों को लिखा और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को यूं आगे बढ़ाया।

0: वाली उम्र है।
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: कहते हैं झुमका गिरना आसान है, लेकिन झुमके को ढूंढना बहुत गंभीर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, एसडी बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, युगल स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे फिल्म जुगनू के लिए। तो बात चल रही है झुमकों की। अगर आज के इस माहौल में हम बात करें तो बहुत तरह के झुमके हमें फैशन के तौर पर मिल सकते हैं। ऑफिस के लिए अगर हम चाहें तो हल्के झुमके जो रोजाना हम पहन सकते हैं, छोटे छोटे झुमके लाइट वेट गोल्ड के या जो है आर्टिफिशियल झुमके भी आप पहन सकते हैं, पसंद किए भी जा रहे हैं। कुंदन के, पर्ल के, शादी लहंगे, शादी में खास तौर से लहंगे और खास जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें आप कुंदन का वर्क किए छोटे छोटे मोती जड़े जो है झुमके भी पहन सकते हैं। इसके अलावा सुई धागा ईयरिंग्स भी मिल रही हैं, और ये जो डिज़ाइन है लंबी पतली चेन और नीचे छोटे डिज़ाइन के साथ साथ आती है, जो इंडियन और इंडो वेस्टर्न दोनों तरह का लुक देती है और हमें अच्छी भी लगती है। खासतौर से यंगस्टर्स के कानों में तो ये बहुत अच्छी लगती है, और कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं और कैजुअल जो आउटिंग्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो काले और सिल्वर मेटल के बड़े झुमके मिरर वर्क वाले भी पहन सकते हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास

0: यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती

0: में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में 3rd बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ।
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म गोरा का ये गीत।

कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से, आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए, कार्यक्रम में अब सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ, हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर सुरीला सफर। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ, हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर, सुरीला सफर। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुरीला सफर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिंदगी का ये सफर उतार चढ़ाव भरे एक खूबसूरत सुरीले गीत जैसा ही तो है, जो अपने अनोखे तजुर्बों और अनुभवों से भरा हुआ है। यानी हर लम्हा एक नई धुन की तरह आता है, जिसमें सुख दुख के सुर मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं, है ना? तो आज का ये सुरीला सफर कितना यादगार बन जाएगा, क्योंकि आज हमारे श्रोताओं ने उस सफर में घुसकर उन गीतों को ढूंढ लिया है जो गीत आज हमने आपके लिए चुने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया था ताकि सरल हो जाए वो बात जो आप चाहते थे, और आपने वो कर भी दिखाया, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम दो महिला गायिकों द्वारा गाए गए गीत पर आधारित है। यानी इनमें दो महिला गायिकाओं ने अपनी आवाज दी है, और आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्मों में एक खास जगह रखते हैं वो गीत जहां दो अलग अलग महिला आवाजें आपस में मिलती हैं और वे गानों में एक अलग ही ऊर्जा और मस्ती और भावुकता भर देती हैं। तो ऐसे कई शानदार गीत हैं महिला जुगलबंदी से में, जो गायिकाओं में अनोखा तालमेल हमें देखने और सुनने को मिलता है। लता जी की बात करें, आशा जी की बात करें, उषा जी की, गीता दत्त की, सुमन कल्याणपुर की, कमल बारोट की, न जाने कितनी ऐसी आवाजें हैं आज इस सुरीले सफर में हमारे साथ। और ये सभी गीत, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ही संगीतकार चित्रगुप्त साहब, यानी महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में गाए गए गीत हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा जब ये बता दिया था तो आपने उन गीतों को ढूंढ भी लिया है। हाँ, कुछ श्रोताओं ने कहा है कि भाई अभी भी हम इन गीतों को नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई बात नहीं, आज इस सुरीले सफर में आप शामिल होइए ना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। चित्रगुप्त साहब का संगीत, प्रेम धवन के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है तूफान में प्यार कहां।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहां। हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं और लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपने विविध भारती के सुरीले सफर में आज की इबारत को कुछ स्पष्ट करके आसान कर दिया है। जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और बजने वाले गानों का निर्णय हो ही गया समझो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने इबारत की जगह खुद गीतों के शब्द लिख दिए और उसमें यह भी लिख दिया कि सभी गीतों के संगीतकार एक ही हैं और ये सभी सभी गीत दो महिला गायकों के स्वर में होंगे, तो वैसे बहुत मुश्किल तो हो गया है। इबारत में शब्दों को ढूंढकर हम कई गीत सही लिख देते थे, लेकिन आज की परीक्षा मुझे लग रहा है और कठिन है। मैं दावे के साथ लिख रहा हूं कि बहुत ही कम श्रोता ढूंढ पाएंगे। बस एक शब्द गोरी पे दो महिला गायक ही ढूंढ पाया हूं। बाकी गीतों पर नजर दौड़ाई तो संगीतकार भी अलग अलग दिमाग में आ रहे हैं। उफ, कर दिया दिमाग का दही। अरे इतना दिमाग को खराब करने की जरूरत थोड़ी है। ये कार्यक्रम तो मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है आपके लिए, है ना। इसमें हमें अपने दिल और दिमाग को बहुत ही शांत और सुकून से भरा रखना है, तभी तो ये सफर सुरीला बन पाएगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने इबारत पर से इबारत न लिखकर सभी श्रोताओं की इच्छाओं को साकार कर दिया है। खूब अच्छा लगा, जो बात हम चाहते थे वही हो गई। आज मैं गीत सूची तैयार न करते हुए सिर्फ जो गीत बजने वाले हैं उसे सुनने का लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि जो गीत सुनवाए जाने वाले हैं उसके संगीतकार चित्रगुप्त होंगे, जो मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक है। बचपन से इनके रचे गीत सुनकर मेरे दिल की धड़कन रंग लाती है, आपके दिल की धड़कन भी रंग लाती होगी। ये विविध भारती के दायरे, ये दोपहर का समा, ऐसे में क्यों न जुड़ जाए हम वहां। मिलते हैं दोपहर एक बजे। क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो गीतकार भी बन गए हैं लगता है, और शायर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के और हम पढ़ेंगे विचार, जहां उन्होंने कुछ गानों को बिल्कुल सही रूप से समझा है। ये गाना है फिल्म परदेसी का, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की ही हैं, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाए ऐसा हो नहीं सकता, जरूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई है और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूं और विविध भारती का आभारी हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा, निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में

विविधता ही उसकी पहचान बनती है जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है। याददाश्त और दिमाग की कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया गौरी, तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं। अब गाने और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मेल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतजार है। ठीक है, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफर है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफर तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और ये सफर सुहाना होगा। बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है नई जिंदगी। प्रेम धवन की बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है, और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं? बिल्कुल, आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया, समझो। अरे वाह, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है? आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी, कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। चूंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आरा फिल्म का लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद हैं, जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं, आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं। इस बार फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डालें, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वहीं आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है। अब फिर परीक्षा होगी, जानकारी बता पाएंगे, चलो चलें सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहां करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा, आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन।

हैं, आपने हमें धन्यवाद दिया है और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसजी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया। उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहां तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है।

महारथी, ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको। मुझे वही एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है, तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की पोस्ट देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है, फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले, जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं, ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और ए काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, ए काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफर में तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा अगर आप हैं हमारे साथ, तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बाहर आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा। चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में। इसे आर कृष्णा ने लिखा है, इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

0: बन।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीती लेंगे बाजे हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश है और काफी हंसमुख लग रही है। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी, तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांद रे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमाकर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत

पसंद है। फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी बहका हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरीला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे अधिक मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में निशुल्क आवागमन की सुविधा दिए जाने की घोषणा की है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों को बिना किसी आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और मठ मंदिरों से छात्रों और अभिभावकों के लिए पेयजल और सत्तू जैसे पेय पदार्थों की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित दो दिवसीय

0: राष्ट्रीय एआई समिट का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि युवा शक्ति, स्टार्टअप और नवाचार के बल पर बिहार डिजिटल क्रांति का अग्रणी राज्य बने। उन्होंने कहा कि एआई आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना और युवाओं के लिए कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के एआई विशेषज्ञ, स्टार्टअप, डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी।

0: और युवाओं के लिए कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के एआई विशेषज्ञ, स्टार्टअप, डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ऊर्जावान कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। श्री नवीन ने प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित दो दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और तन्मयता से कार्य कर रहे हैं, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से बेहतर दिशा निर्देश मिलते हैं। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल समापन सत्र में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नीति बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों को गृह जिले के अपने प्रखंड की गृह पंचायत के बगल की पंचायत में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षकों का गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला होगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल जिले के विभिन्न स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है। वहीं पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां शहरियों की ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाने का एक अहम ज़रिया हैं। जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 19वें रोज़गार मेले का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जाहिर किया है और अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी लगन, तर्ज अमल और रोज़मर्रा के कामों से इस भरोसे का मान रखें और इसे मज़ीद मजबूत करें। जनाब मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्याती सफ़र का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत दुनिया के कई मुख्तलिफ ममालिक के साथ शराकतदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौक़े, रोज़गार और आलमी तजुर्बा फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क अब पूरी दुनिया का एक काबिले एतमाद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। रोज़गार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों, तंजीमों में नौमुंतखब 51,000 से भी ज़्यादा नौजवानों को तकरीरी नामा तकसीम किए गए। ये रोजगार मेला पूरे मुल्क में 47 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किया गया था। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा इम्तहान के उम्मीदवारों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। जनाब चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका मकसद दूर दराज के इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों को बगैर किसी माली और जहनी तनाव के वक्त पर इम्तहान मराकज तक पहुँचाना है। वज़ीर आला ने ज़िला इंतज़ामिया, रज़ाकाराना तनजीमों और मठ मंदिरों से भी अपील की है कि वो तलबा और उनके वालदैन के लिए पीने के पानी और

0: सत्तू जैसे मशरूबात के इंतजामात में तावुन करें। वज़ीर आला सम्राट चौधरी आज पटना के ऊर्जा सभागार में मुनाकिद दो रोज़ा AI समिट का इफ्तिताह किया। जनाब चौधरी ने कहा कि हमारा अज़्म है कि यूथ एनर्जी स्टार्टअप और इख्तरा के ज़ोर पर बिहार डिजिटल इनकलाब के सफ़े अव्वल की रियासत बने। उन्होंने कहा कि AI पर मोहित तरक्की से तालीम, सेहत, ज़रात और नज़्म व नस्क को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। जनाब चौधरी ने कहा है कि इस समिट का ख़ास मकसद रियासत को टेक्नोलॉजी हब बनाने और नौजवानों के लिए फ़रोग़ हुनर के नए मौक़े फराहम करना है। प्रोग्राम में मुल्क के AI माहरीन, स्टार्टअप डेवलपर्स और रिसर्च स्कॉलर समेत हज़ारों की तादाद में तलबा शामिल हो रहे हैं। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा है कि तवानाई से भरपूर कारकुन ही पार्टी की असल ताकत हैं। जनाब नवीन ने बिहार BJP की जानिब से पटना सिटी में मुनक़दा दो रोज़ा दीनदयाल उपाध्याय तरसीलो तरबियती मुहिम का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुन पूरी लगन और तुंदही से काम कर रहे हैं और ऐसे तरबियती प्रोग्रामों से उन्हें बेहतर रहनुमाई मिलती है। इस मौके पर पटना साहब के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद, रियासती सदर संजय सरोगी समेत पार्टी के कई सीनियर रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे। वज़ीर आला सम्राट चौधरी कल इख्तितामी सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि रियासत में आइंदा 5 वर्षों में 1 लाख असातज़ा की तकर्री होगी। इसके तहत हर साल कम से कम 20,000 असातज़ा की तकर्री की जाएगी। इसके लिए हर साल जुलाई के महीने में तकर्री से मुतालिक इश्तहार जारी किया जाएगा। महकमे तालीम की जायज़ा मीटिंग के दौरान जनाब चौधरी ने असातज़ा के तबादला के लिए नई पॉलिसी बनाने की भी हिदायत दी है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रियासत के जनूबी हिस्सों में शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली लू की सूरत हाल बनी हुई है। वहीं शुमाल मशरक़ी हिस्सों में मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से आंधी और बारिश के हालात बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल अजला के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने का खदशा है। दूसरी तरफ पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास समेत रियासत के जनूबी वस्त और जनूबी मगरबी हिस्सों में कई मकामात पर शदीद गर्मी और लू की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

इंडियन आर्मी CSBU ग्रेड 2 के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: प्यार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का
1: महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी।

0: मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी

0: व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन

0: के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी एस एन त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थीं। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोंसले, शमशाद बेगम और साथी। फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार हैं पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: कोई मारे कोई किसे को,
1: ना कोई खाए मांस किसी का,
0: ना कोई पीवे खून किसी का,
1: ना कोई रोके सांस।

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमती, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सैक्यू की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोंसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: सब यथास्थान विराजे, कार्यवाही आरंभ की जाए।
1: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
0: आने दिया जाए।
2: महाराणा की जय।
3: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
0: मंत्री जी।
1: अन्नदाता,
0: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
1: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अति सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
0: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
1: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
0: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
1: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
0: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
1: महाराज,
0: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
1: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
0: चूड़ावत जी।
4: महाराणा,
0: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
4: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप

0: और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है, वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है, यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लो इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
2: जी महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी,
3: जी महाराणा,
1: सावन चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
3: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलानी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामंत, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांगी क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन
3: जी,
0: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
3: जी हाँ, सामंत तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये। पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है।

0: आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं।
1: दीदी,
0: कौन?
1: स्वागत है।
0: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
0: ना,
1: हाँ, अब ठीक है। देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
0: स्वामी, मेरे देवता,
1: सच
0: मैं तुम्हारी पुजारी।
2: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
1: तुम सच मुझ कितनी सुंदर हो।
2: नगर की राजकुमारी
1: चंद्रमुखी, पागल चकोर,
2: अपनी विशाल सेना
1: ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
2: नगर के राजा ने
0: स्वामी
2: हमारे महाराणा
0: से पागलपन
2: सहायता की रानी,
0: और सुनिए
1: रानी, महाराणा
2: के
1: तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूं।
0: स्वामी,
1: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
0: सुना आपने?
1: इधर
0: स्वामी।
1: प्रिय,
0: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
1: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई हो?
0: स्वामी, सुनिए नगाड़े की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
1: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
0: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
1: प्रियतमे, मैं
0: प्रियतम,
1: मैं
0: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
1: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में यह भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
0: स्वामी, यह केवल आपका मोह और वासना है।
1: रानी,
0: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
1: रानी,
0: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
1: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
0: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
1: रानी ठहरो,
0: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती हूँ।
1: ठहरो रानी,
0: यह हर वंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है,

0: रानी ठहरो, रानी सुनो तुम।
1: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर ये कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलिया मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मदहोश सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं, नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
2: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बालक के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
2: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
1: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
2: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष, अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
1: नाना,
2: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
1: ऐसा न कहिए प्रियतम। यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
2: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
1: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य दे।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका। क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें यह तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा।

0: रहा है।
1: रण सिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हाड़जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रण सिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी, ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा।
2: आई आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
1: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
2: ये क्या कह रहे हैं?
1: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर तारा।
2: रानी जी,
1: रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। पंगली रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूं, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता, बता ना। अरे फिर रोती है। ला, ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है। तारा, जल्दी कर, लापरवाह। ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शीष रण सिंह को दे देना। और कहना, कहना रानी ने यह विजय मार समझ के लिए दी है। विजय मार।

0: तारा, तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामंत के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामंत तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है।

0: उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हरी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
1: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
0: आओ आओ रणसिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हरी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
1: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
0: अच्छा,
1: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
0: सच?
1: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
0: वो क्या?
1: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
0: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
1: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
0: रणसिंह जी, क्या लाए हो? हरी रानी का भंग ऋषि, ये क्या किया तुमने रणसिंह?
1: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे इसलिए।
0: रणसिंह, मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया। हरी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रणसिंह। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो,
2: विजय हमारी है।
1: बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही।
0: सच रणसिंह, हम विजयी हुए?
1: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
0: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
2: मैं चाहता हूँ सामंत, आप कहाँ जाने जा रहे हैं? सामंत, ठहरिए, ठहरिए सामंत।
0: रानी, सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
3: जी। सामंत,
0: रानी जी कहाँ है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
3: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
0: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था, 120 बहादुर के लिए ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने
2: अच्छा।
3: मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पर गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे
3: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश मैं सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था।

ऐसा एक जीवन बीता, और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे, और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे, और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती, मैं आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे, और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे।

0: रुपये उधर से आए, तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें, तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
1: अरे वाह
0: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब
1: ओके
0: बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे, पर हारमोनियम रहता था, अब बजा तो कोई नहीं था। तो
1: हाँ
0: फिर वो हमारा घर जैसे बगल में था, तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम दो दो तीन तीन घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को, कि
1: अरे
0: एक गाने के
1: वाह
0: आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे
1: अपने घर के
0: पिताजी
1: ही
0: भी थे,
1: चबूतरे में हुआ।
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया, और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए।
1: वाह वाह
0: सो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय
1: हाँ
0: जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गांव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के
1: अच्छा
0: आगे है पहरा,
1: ओके, तो
0: बहुत ही छोटा सा गांव है सर, बहुत ही।
1: कितनी क्लास तक वहां पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय, जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी।
1: हाँ
0: उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव, जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक,
1: अरे वाह
0: जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है।
0: सॉन्ग था
1: अच्छा,
0: उसका।
1: जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
0: उस
1: लोकगीत?
0: पे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
1: हाँ
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
1: उपटा लगत उंगरिया, क्या
0: उंगरिया, मतलब है
1: बात
0: ना,
1: है।
0: कहाँ ले आए राजा
1: क्योंकि
0: पहाड़िया में,
1: मतलब
0: लाइक
1: बुंदेलखंड,
0: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है, ये
1: हाँ
0: पहाड़िया

0: रेखा ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे
0: बहुत
1: सुन
0: ही मजा, बहुत
1: के
0: मजा आ गया। तो
1: तो।
0: यही था फिर बुंदेली। फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे
0: और
1: बाप
0: मैं
1: रे,
0: 9th क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक
0: उस
1: है।
0: नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम वो छोटे छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे,
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब
1: हाँ
0: मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो मैं पहला नाटक था मेरा, तो
1: हाँ
0: उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूं।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ कि खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर
1: पन्ना
0: हैं,
1: के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो, अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है,
1: हाँ

0: दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चल रही है, क्योंकि वहां पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें
1: वाह,
0: कहीं देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं एनएसडी से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी एनएसडी जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके एनएसडी पहुँचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अभी
1: बात
0: मुझे
1: है।
0: पहुँचना है एनएसडी। तो फिर वहाँ
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी
1: तो
0: जी
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, वो
1: जाए। गोविंदा
0: गाना
1: की
0: गाना सुनता,
1: फिल्म।
0: तू पागल प्रेमी आवारा, दिल
1: हाँ
0: तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना,
1: हाँ
0: ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है।
0: तो ये कुछ कुछ गाने हैं जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल, वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते
0: ही।
1: हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत देखा है
1: करेंगे।
0: फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंडा,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: भी
1: है।
0: सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी।
1: हैं।

0: वो एक शिविर लगाते हैं
1: जी
0: और वहां से आपको एक राह दिखती है,
1: जी जी
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है
1: जी
0: और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा, जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुँचना है।
0: उसके आगे क्या होता है।
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ, तो अब मुझे तो कोई कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए, कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पहुँचा। उस समय मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुँचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुँच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD, मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नारी विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक, उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी,
0: अरे
1: रिटायर्ड
0: बाप रे
1: फौजी थे वो।
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्हें बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अरे अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा, मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
0: हाँ वो छोटा
1: छोटे
0: वाला।
1: वाला फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो
0: हाँ
1: मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, बस
0: रिकॉर्ड कर
1: इसमें
0: दो।
1: रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या एक्ट्रेस किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं,
0: अरे
1: तो
0: गजब।
1: तुम अनुशासित
0: उसने
1: हो,
0: 1 मिनट में सब बोल
1: सब
0: दिया।
1: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा, तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो
1: तो मैंने
0: कॉलेज
1: कॉलेज
0: किस
1: में,
0: शहर में था।
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक किया,
0: बिल्कुल।
1: और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल।
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो, आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर ये नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
0: बिल्कुल।
1: आप जानते होंगे बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल। विहान
1: तो
0: ग्रुप।
1: हम विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता, भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर हैं अलख नंदन सिन्हा जी, मैं
0: गजब।
1: अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं MA के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूं, अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा,
0: बिल्कुल।
1: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं मैं जाके कहीं मैंने कुछ पुआ हुआ

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका
1: मुलाकात
0: परिचय
1: होती है।
0: होता है जो
1: जी
0: तब तक एनएसडी में हैं
1: जी
0: और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए
1: दिखाई दे।
0: और

0: आया, नाश्ता वाश्ता किया और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा और फिर एक बंदा,
1: रोशनपुरा चौराहे पर।
0: हाँ एक एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छूए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते। मैंने कि बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं। उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दरह के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया।
0: हेमंत दादा आए पहले और उन्होंने
1: अच्छा।
0: बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा। और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो सकता है तुम्हें रख लें, और तुमने बोला तुम गाने आने गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख लें। और मैं अतरंगीता सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े
1: अरे
0: बड़े
1: बाप
0: मैंने
1: रे।
0: बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई, हम पी के बैठे हुए हैं। और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे, वो उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। वैसे
1: अरे
0: मैं
1: बाप रे।
0: बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये मुझे ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे
1: ज्यादा
0: चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखिए इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूं, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे। मैं सर कुछ भी करूंगा मैं, आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं, हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उनने बोला कि अच्छा। तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको,
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा
1: वाह
0: मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिच रही खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ
1: वाह
0: पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से ले बुआने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: शानदार है।
0: दद्दा
1: वाह
0: मोखा
1: वाह
0: मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है,
1: वाह।
0: कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बाड़ो ले बुआने,
1: वाह वाह
0: मोखा अपने
1: वाह।
0: मौसिया से गुब्बाड़ो ले बुआने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं,
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह
0: आज ते
1: वाह,
0: 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: क्या
0: दद्दा
1: बात है।
0: मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने,
1: वाह
0: दद्दा
1: वाह,
0: मुखा मेला जाने।
1: कहते हैं देवेंद्र
0: कि बचपन उस समय ये बुंदेलखंड के कभी गानों में कभी
1: ये
0: जो
1: होता
0: राइटर
1: था।
0: होता था उसका नाम छाप
1: बिल्कुल।
0: बोलते थे उसे,
1: हाँ।
0: छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में, शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव

0: पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया वो ले ली और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस वहां खाना हो गया,
0: खाना हो गया। और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं। मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे। वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो। तो यार मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, और खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे, कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे। हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे। तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया सर, देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है।
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ,
1: सुनेंगे।
0: पक्का चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत शानदार
0: सुंदर
1: गाना
0: गाना
1: है।
0: है।
1: हाँ,

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र
1: जी।
0: आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा।
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले

0: अटैक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था। उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जुगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था। उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
1: म्यूजिक का सिलसिला चल पड़ा,
0: चालू हो गया। फिर उसके
1: क्या
0: बाद मैं
1: बात
0: पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना। तो
1: अच्छा,
0: एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन।
1: वो बोर्ड और
0: वो तो
1: वो
0: छूटे नहीं है,
1: धुरंधर
0: वो
1: जी याद
0: रिकॉर्डिंग
1: आ
0: तो
1: रहे।
0: छूटे नहीं है,
1: हाँ
0: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर
1: अच्छा।
0: एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ। मैंने कहा अरे यार, तो फिर
1: ओके।
0: मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ। और तो
1: ओके।
0: उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम
1: लेकिन
0: किया,
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन हो
0: हो
1: गया
0: गया।
1: और वहीं वो
0: और वो
1: धुरंधर जी
0: धुरंधर जी से
1: मिले,
0: मिलना हुआ मेरा,
1: मिले धुरंधर जी।
0: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी, पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक। मैंने
1: हाँ
0: बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, यार ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे। वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग
1: हाँ
0: ऐसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे
1: बिल्कुल
0: दुनिया में होता है।
1: जी।
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब आप
1: हाँ,
0: वो
1: परिवार
0: प्यार
1: के एक
0: मिलता, परिवार के
1: सदस्य।
0: सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला।
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे। बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा
1: बस।
0: रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म। मेरी भाषा इतनी खराब थी
1: अच्छा,
0: क्योंकि मेरे
1: लेकिन
0: को,
1: ये फिर भाषा पर काम कैसे किया, ये
0: हाँ
1: बहुत
0: मैं
1: महत्वपूर्ण
0: बता
1: है।
0: रहा हूं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था, तो लोग हंसते थे, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है। हाँ, तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके, मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा, मैं गलत बोलता था,
1: शक को साफ बोल रहे हो।
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता, जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया, जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था, शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम। तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने एक बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनुज खुटवत सर, और मैंने, मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है,
1: वाह
0: और
1: वाह
0: कैरेक्टर
1: वाह।
0: बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूं, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया, सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया, और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि

0: ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते हैं इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल।
0: तुम्हारी एफर्टलेस का मैं दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा
1: तो
0: पूरा।
1: फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है आपने?
0: अभी दिल्ली पहुंचा, उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल।
0: बंसी कौल जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा।
0: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज एंड लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं। तो
1: वहां
0: हमने,
1: से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1,000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है, और वहाँ पे एक गार्ड रहता है, और वहाँ पे एक फाटक है, और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, और वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था उस डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास, एनएसडी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे वो, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे, पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहाँ हर हाल में पहुँचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हाँ, वो क्योंकि रेडियो का बंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज़ चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है, और
1: उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल।
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी अभी बता देता हूँ कि
1: बिल्कुल।
0: एक छोटा सा सेंटेंस, जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का

असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के बदल दी। उस पर ये कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है, तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होकर ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है।

0: इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है। सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह,
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर इस्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है,
0: ये
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: सॉन्ग
1: है,
0: है।
1: बढ़िया गाना है।
0: जी जी
1: कैसा
0: जी
1: रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: आ सर, जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो हैं, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी
1: वो
0: जी
1: एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज
0: जी
1: में?
0: जी स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी, जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा,
1: बेचारा।
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्यों, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर
1: बिल्कुल,
0: काम, आशीष विद्यार्थी जी भी उसमें काम कर रहे हैं, तो
1: वाह,
0: काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था।
1: सुनाओ ना।
0: अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, प प प प प प प प प प प प, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, प प प प प प प प प प प, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, प
1: वाह
0: प
1: वाह,
0: प प प प प प प।

0: काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल
0: चाय
1: बिल्कुल,
0: चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह
0: पी के कहीं तो फूंक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या
0: उसके
1: सुंदर,
0: लिरिक्स ऐसे हैं। मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
0: मेरे
1: करके,
0: को बहुत खुशी
1: और
0: हुई
1: सबसे
0: आपसे।
1: अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
0: जी जी जी
1: तो फिर कभी मिलेंगे
0: हंड्रेड
1: और
0: परसेंट
1: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती
0: बहुत
1: में आने
0: बहुत
1: के लिए।
0: शुक्रिया। मैं रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती। मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर
1: हाँ
0: दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार। और
1: बिल्कुल,
0: बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इत्मीनान है एक रेडियो में, और मैं
1: बिल्कुल
0: बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदैया मैं कहाँ से कहूँ, जैसे गाने मैंने सुन सुन
1: क्या
0: के बड़ा
1: बात,
0: हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ, कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है, कि वो
1: क्या
0: गाना
1: बात
0: नहीं
1: है,
0: सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके
1: वहां
0: साथ
1: से
0: भी बैठा
1: यहां
0: हुआ
1: तक
0: था।
1: का
0: और
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके। और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता
1: बिल्कुल
0: रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई।

है पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत तो वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद

0: का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर सुनिए युवा दोस्तों के लिए हमारा कार्यक्रम युवाणी। भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा भोजपुरी बुलेटिन समाचार। वापिस से स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से शाम 6:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। सांझ गीत भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:40 पर। शाम 7 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। संधकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास की प्रस्तुति होगी शाम 7:15 पर। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल और प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा।

शाम 7:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो मन पसंद। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या हम रिले करेंगे। आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा की प्रस्तुति होगी रात्रि 9:15 पर सजेगी गजल की महफिल, और रात्रि 9:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में, और तब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग आप सुनेंगे रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से ही हम प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। समय मिलाइए, शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

शिव पंच अक्षर स्त्रोत एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे सचेत टंडन और परमाकर टंडन की आवाजों में। और अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अनुराधा पौडवाल और रत्नेन्द्र भदौरिया की आवाज़ों में इस भजन को सुनने के बाद अब आइए सुनते हैं ये भजन।

दीवाना श्री राम का एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे। रंजन दुबे और साथियों की आवाज़ें थीं। अजीत तिवारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी असलम मिर्जापुरी ने। और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये भजन।

अंकिता ब्रह्म के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए हमारा कार्यक्रम युवा वाणी।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का युवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे ऑबस्टेट्रिक फिस्टुला क्या है विषय पर। आस्था का महापर्व गंगा दशहरा जो 25 मई को है, इस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के बारे में। अलावे इसके आप सुनेंगे कुछ फिल्म संगीत भी।

श्रोता दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला क्या है इस विषय पर। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला महिलाओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह आमतौर पर कठिन और लंबे समय तक चलने वाले प्रसव के कारण होती है। इसमें महिला के शरीर के अंदर एक असामान्य छेद बन जाता है जिससे पेशाब या मल अपने आप निकलने लगता है। इससे महिला को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी होती है। इसका इलाज ऑपरेशन द्वारा संभव है और समय पर सही चिकित्सा मिलने से इसे रोका भी जा सकता है। वैसे यह बीमारी महिलाओं के आत्मविश्वास और जीवन दोनों को प्रभावित करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय पर अस्पताल में प्रसव और सही इलाज से इससे बचाव संभव है। इसलिए गर्भावस्था में नियमित जांच कराएं और सुरक्षित प्रसव को अपनाएं। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं ये फिल्म संगीत।

फौजी कॉलिंग फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे दिव्य कुमार की आवाज़ में। और अब आइए युवाणी कार्यक्रम में चर्चा करते हैं आस्था का महापर्व गंगा दशहरा पर। लेकिन इससे पहले सुनिए कुछ संदेश।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
5: हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम युवाणी। तो इस कार्यक्रम में श्रोता दोस्तों, आज हम बात करते हैं आस्था और श्रद्धा और पवित्रता के महापर्व गंगा दशहरा की। भारत की संस्कृति में नदियों को माँ का स्थान दिया गया है श्रोता दोस्तों, और उनमें भी माँ गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है। गंगा दशहरा का पर्व हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए यह दिन अत्यंत पावन माना जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। तभी से माँ गंगा को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी माना जाता है। श्रोताओं, गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार है। गंगा का जल खेतों को सींचता है, लोगों की प्यास बुझाता है और हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और गंगा सागर जैसे तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचते हैं। गंगा दशहरा के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज हमें एक महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है। जिस गंगा को हम माँ कहते हैं, उसी गंगा को हम प्रदूषित भी कर रहे हैं। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, प्लास्टिक और कचरा गंगा में डाला जा रहा है। इससे गंगा का जल दूषित हो रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस गंगा दशहरा पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम गंगा और सभी नदियों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे, नदी में कचरा नहीं डालेंगे, जल की बर्बादी नहीं करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। गंगा हमें जीवन देती है दोस्तों, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। तो आइए, इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर माँ गंगा

से सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। और अब आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में।

सत्यमेव जयते 2 फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और अब युवाणी कार्यक्रम में आइए, चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर।

श्रोता दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा दो देशों में से एक है। हमारे देश की बड़ी आबादी युवा है और यही युवा भारत के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन केवल डिग्री हासिल कर लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है। आज के समय में दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक अनुभव यानी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी हो गया है। इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जैसी पहल शुरू की है। श्रोताओं, इंटर्नशिप का मतलब होता है किसी संस्था, कंपनी या कार्यालय में काम को सीखना और वास्तविक अनुभव प्राप्त करना। इससे युवाओं को यह समझने का मौका मिलता है कि नौकरी की दुनिया कैसे काम करती है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं और अपने कौशल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। इस योजना के माध्यम से छात्रों और युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों, निजी कंपनियों और संस्थानों में काम सीखने का अवसर मिलता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य में अच्छी नौकरी पाने की संभावना भी मजबूत होती है। श्रोताओं, आज कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी खोजते हैं, है ना? लेकिन अनुभव न होने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इंटर्नशिप उनके लिए एक मजबूत आधार बनती है। यहाँ वे नई तकनीक सीखते हैं, टीम में काम करना सीखते हैं और समय प्रबंधन जैसी प्रमुख बातें समझते हैं। श्रोता दोस्तों, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों के युवाओं को समान अवसर देने की कोशिश की जाती है। चाहे छात्र शहर का हो या गांव का, यदि उसमें सीखने की इच्छा है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। श्रोताओं, आज का समय डिजिटल और तकनीकी युग का है। कंपनियां ऐसे युवाओं को पसंद करती हैं जिनके पास पढ़ाई के साथ साथ काम का अनुभव भी हो। इसलिए इंटर्नशिप युवाओं को नौकरी की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने में मदद करती है। इस योजना से युवाओं को केवल काम सीखने का अवसर ही नहीं मिलता, बल्कि कई बार उन्हें स्टाइपेंड यानी आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जिससे छात्र अपने छोटे छोटे खर्चों को पूरा कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं को यह संदेश देती है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। यदि युवा अपने समय का यही उपयोग करें, नई चीज़ें सीखें और मेहनत करें तो वे अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, भारत का भविष्य हमारे युवा हैं। यदि युवाओं को सही दिशा, सही अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो हमारा देश नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना इसी सोच को मजबूत करने का एक प्रयास है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर युवा को अपने कौशल को पहचानना चाहिए, नए अवसरों का लाभ भी उठाना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अब आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं मुक्का फिल्म का ये गीत है।

मुक्का टू फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ों में। और अब इसी के साथ

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत।

0: मनोरंजन ओझा के गए इस भोजपुरी लोकगीत के साथ ही भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार।
1: प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना हवे। अब रउआ सभी लोग नंदिनी से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले बाड़े कि सरकारी नौकरी नागरिकन के जीवन में बेहतर और आसान बनावे के महत्वपूर्ण माध्यम हवे। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वां रोजगार मेला के उद्घाटन कैलन। प्रधानमंत्री कहले कि देश अपन कर्मयोगी पर भरोसा जतौले।

0: संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार।
1: आकाशवाणी पटना हवे। अब रउआ सभी लोग नंदिनी से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले बाड़न कि सरकारी नौकरी नागरिकन के जीवन में बेहतर और आसान बनावे के महत्वपूर्ण माध्यम हवे। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वां रोजगार मेला के उद्घाटन कैलन। प्रधानमंत्री कहले कि देश अपन कर्मयोगी पर भरोसा जतौले बा। अब ई उ लोग के जिम्मेदारी हवे कि उ लोग अपन लगन आचरण और रोजमर्रा के काम से ओ भरोसा के मान रखस और ओकरा के और मजबूत करस। प्रधानमंत्री इहो कहले कि भारत विश्व के कई गो देश के साथे साझेदारी भी कर रहल बा, जेकर मकसद बा कि देश के नव युवा लोगन के अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलावल जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित 2 दिवसीय AI समिट के उद्घाटन कैले। श्री चौधरी कहले कि हमनी के संकल्प बा कि युवा शक्ति, स्टार्टअप और नवाचार के दम पर बिहार डिजिटल क्रांति में अग्रणी राज्य बने। वो आगे कहलन कि AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था के और ज्यादा प्रभावी बनावल जाए। श्री चौधरी इहो बतावले कि इस समिट के मुख्य उद्देश्य राज्य के टेक्नोलॉजी हब बनावे के और युवा लोगन खातिर कौशल विकास के नया अवसर देवे के हवे। कार्यक्रम में देश भर के AI विशेषज्ञ, स्टार्टअप डेवलपर्स और शोधकर्ता लोगन के साथ हजारों के संख्या में छात्र भी शामिल भइल रहले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 21 जून के होए वाला NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थी लोगन के सरकारी बस में मुफ्त आवे जाए के सुविधा देवे के घोषणा कैले बाड़न। श्री चौधरी सोशल मीडिया पोस्ट में कहले कि एकर उद्देश्य दूर दराज के इलाकन से आवे वाला परीक्षार्थी लोगन के बिना कोनो आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुँचावे के हवे। मुख्यमंत्री के तरफ से जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था और मठ मंदिर से छात्र और अभिभावक लोगन खातिर पीए के पानी और सत्तू के व्यवस्था में सहयोग करे के अपील कैले बाड़न। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न कि राज्य में अगला 5 बरिस में 1 लाख शिक्षक लोगन के नियुक्ति होई। एकरा तहत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षक लोग के बहाली कैल जाए। एकरा खातिर हर साल जुलाई महीना में नियुक्ति से जुड़ल विज्ञापन जारी कैल जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी शिक्षक लोग के ट्रांसफर खातिर नया नीति बनावे के भी निर्देश दिले। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपया के बजट पारित कैल गईल। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित भइल बैठक में शिक्षा व्यवस्था के बेहतर बनावे, छात्रावास में बेहतर सुविधा उपलब्ध करावे और पुस्तकालय के आधुनिक बनावे से जुड़ल प्रस्ताव पर चर्चा भइल। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह अपन भाषण में विश्वविद्यालय के उपलब्धि के जानकारी दिलान। ए मौका पर विधान पार्षद नीरज कुमार समेत सीनेट के बाकी सदस्य लोग भी मौजूद रहले। नीरज कुमार आकाशवाणी से अपन विशेष बातचीत में सीनेट बैठक में भइल चर्चा के संक्षिप्त जानकारी दिलान। भाकपा माले के तरफ से राज्य में शिक्षा व्यवस्था में भइल गड़बड़ी, शिक्षक अभ्यर्थी लोगन के साथे भइल नाइंसाफी और नीट पेपर लीक मामला के लेके आंदोलन के घोषणा कैल गई। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पटना में पत्रकार लोगन से बातचीत करत बेरा कहलन कि 24 मई के पटना में विरोध प्रदर्शन कैल जाए। वो राज्य सरकार पर आम लोगन के समस्या के अनदेखी करे के आरोप लगवले बाड़न। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहले बाड़न कि ऊर्जावान कार्यकर्ता लोग ही पार्टी के असली ताकत हवे। श्री नवीन प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन करत बेरा ई बात कहले। वो इहो कहले कि पार्टी कार्यकर्ता लोग के तरफ से पूरा निष्ठा से काम कैल जा रहल बा। पार्टी के लोग के ऐसन प्रशिक्षण कार्यक्रम से बेहतर दिशा निर्देश मिली। ए मौका पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई गो वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लोग मौजूद रहले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काल समापन सत्र में शामिल हुई हैं। प्रदेश के अलग अलग भाग में मौसम के मिलल जुलल रूप देखे के मिल रहल बा। राज्य के दक्षिणी हिस्सा में भीषण गर्मी और लू के स्थिति बनल बा। वही जे उत्तर पूर्वी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी पानी की स्थिति बनल बा। मौसम विभाग के तरफ से जारी पूर्वानुमान में इ कहल गइल बा कि अगला 24 घंटा के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार

पूर्णिया आज सुपौल जिला के विभिन्न स्थान पर आंधी बारिश और वज्रपात के आशंका बावे। वही जे पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भाग के अनेक स्थान पर प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनल रही। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भइल।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सब श्रोता भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार बा। झुनी बहन लोगों के नमस्कार।
1: नमस्कार जगत भाई और सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम। जगत भाई
0: जी,
1: गर्मी इतना बढ़ गई बा कि एकदम अपना चरम सीमा पर पहुंच गई बा।
0: अभी गर्मी ना लगी तो कब लगी? आ दूसरा चीज की देखी, जाड़ा में जड़े लगी, गर्मी में गर्मी लगी। लेकिन ये गर्मी ऐसा बा कि सूरज के जौन रोशनी बा जिससे बुझाता कि आग उगल रहा। बीच में थोड़ा पानी उनी बरसल है तो लागल है कि इंसान तई ना, लेकिन इतना लू नियन चलता कि चलला पर थोड़ा जौन बा ना झुकर जाता
1: तो ऐसे देखी एकरा में बहुत सावधानी बरते के बात
0: है। ये तो जरूरी बा,
1: घर से निकले लगी तो कम से कम पानी खूब पी ली आ खाली पेट ना निकली घर से। लू लागे के ज्यादा डर रहेला,
0: प्यास लागल होके चाहे ना लागल होके पेट में तरी रहे के चाही।
1: आ अपना साथे पानी के बोतल लीही आ अपना शरीर के पूरा ढक के, मतलब कपड़ा कपार पर तौलिया गमछा जौन भी होके ओकरा के लेके चली। आ देखी जगत भाई, आजकल लिक्विड चीज जितना होके उतना मरे तरल पदार्थ है
0: ओकरा
1: के सेवन करी। माने बाहर भी निकली तो नींबू पानी हो गई, सत्तू पानी हो गई, आम के शरबत हो गई, ज्यादा से ज्यादा यही सब के इस्तेमाल करी। आ फल जौन बाटे, फल में जैसे जौन पानी में जैसे तरबूजा बा एकरा में ज्यादा पानी पावल जाला, ककड़ी खीरा बा, ये सब फल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करी। तो देखी हमनी के अपना के बचावे के बाटे, देखी ओतो पानी नहीं माल मवेशी के भी बचावे के बा। आजकल माल मवेशी के बाहर घर से ना निकाली आ उन्हीं के भी ज्यादा से ज्यादा पानी देत रही। पानी के कमी ना होके, नमक के कमी ना होके, उन्हीं के उन्हीं के टाइम से अगर बाहर भी निकलने बानी तो धूप होके से पहले उन्हीं के घर में कर दी आ साफ सुथरा कह के उनके घर में कह के उन्हीं के पानी खूब काम भर पियाई।
0: देखी माल मवेशी के जहाँ तक बात कल है
1: जी जी,
0: हमनी के तो घर में लुका जाते नहीं जा। माल मवेशी के एगो झोपड़ी में रख देते नहीं जा, चाहे कच्चा हो कि चाहे पक्का हो कि ओमें रखा जाता। और काफी समय तो रहल बा, तवे से ही होता कि मवेशी के भी गर्मी होता। और एकरा में देखी कभी कभी ऐसा भी हो जाला कि माल मवेशी घर में बड़ी सन, लेकिन जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ल, धूप तेज भई, तो अंदर अंदर होनी के लू भी लग जाई,
1: लाग
0: चुआवे लागी, खाई ना, बुखार लग जाई, तो परेशान होके के पड़ी। ये से सब बचावे खातिर और वहनी के भी एक चीज ध्यान रखल जरूरी बा कि दो बार तीन बार पानी बाल्टी से जैसे भी वहनी के देखाई
1: साफ पानी पियावत।
0: हाँ, और भोजन भले कम दही लेकिन पानी

0: जरूरी बात। शरीर में जैसे ही गर्मी पड़ेला पानी के ज्यादा जरूरत पड़े लगेगा, क्योंकि पसीना से भी पानी निकलता शरीर से, इससे शरीर में तरल पदार्थ जैसा की बात कर रहे वो भी जरूरी बा। और ये पर देखिए ध्यान दिहल सब केहू को जरूरी बा, बाल बच्चन के भी, माल मवेशी के भी, और साग सब्जी के भी,
1: हाँ पशु पक्षी के भी। देखिए अपना घर में छत पर चाहे जहाँ भी साधन होके मिट्टी के बर्तन में पानी करके रख दी, कुछ बड़ा बर्तन में कटोरा टाइप के, तो हमें भी पशु पक्षी आके पानी पिया सन चिड़िया।
0: पक्षी के जैसे बात कर रही, अब पक्षी भेटात कहाँ बड़ी सन देखे के, गौरैया तो सीधे विलुप्त हो गई सन।
1: पहले भी जौन कबूतर बतख जे भी आता
0: ओमे हमनियों के देखी, गौरैया के भी दिक्कत ही भइल कि हमनी के भी पहले खपड़ पोस रहत रहे, माटी के देवाल रहत रहे, ओमे खपड़े के मैंने खोता बनावल जात रहे, गौरैया निवास करत रही सन। आज परिस्थिति बाकी सारा आदमी पक्का बना दे बा,
1: पेड़ पर भी घोसला बनावत रही सन।
0: हाँ, लेकिन गौरैया धीरे धीरे कहीं देखे के नहीं किसन मिलत, तो ओमे बहुत सा ऐसा भी कारण बा। बहुत से लोग बहेलिया बना के ओकरा के बहेलिया लोग वन पंछी बना के ओकरा के शिकार के रूप में बेच दिलस, इससे धीरे धीरे भी बहुत तरह के गौरैया और दूसरा के घोसला के अभाव में भी गौरैया धीरे धीरे विलुप्त हो गई सन। कहीं कहीं देखे के एक आध को मिल गई सन, दर्शन हो गई तो भी भेटा
1: ना, तो पहले झुंड के झुंड आके आंगन में बैठत रही सन, रौरा पेड़ पर चहचह करिया
0: लावा, खाली खाना खाए बैठे देखे गौरैया के तैयारी हो गई, चोई चोई चोई चोई लगिया सन करे। आज देखे के भेटात नहीं किसन, और आवे वाला भविष्य में तो निश्चित बाकी उन्हीं के दर्शन ना हो पाए। तो देखी बात कही भाई,
1: हाँ,
0: आज हमने के कौन कौन कार्यक्रम के जानकारी करे के बाद तनिका हाँ, ओकरा के बता दिया जाओ।
1: हाँ, तो बताई काले के आइल
0: तो सबसे पहले हमने के जानल जाए खर खबरात, फिर आज के बात में धान के नया प्रभेद के बारे में जानकारी लिहल जाए, और इकरे बाद नया उम्र के नया फसल में धान के उन्नत प्रभेद के भी जानकारी कैल जाए, कुछ चिट्ठी पत्री बाकर जवाब दिहल जाए, और कार्यक्रम के अंत में मौसम के जानकारी कैला के बाद हमनी के कार्यक्रम के समापन कैल
1: कार्यक्रम के संक्षिप्त झलक। अब हमनी के कार्यक्रम शुरू कैल जाए आज के कृषि खबर से। तो देखी श्रोता भाई, आज खबर बा कि धान आ गेहूं के कटोरा के रूप में पहचान होखे वाला रोहतास जिला में अब मक्का के खेती के लेके किसान भाई लोग के रुझान तेजी से बढ़ रहा बा। आवे वाला खरीफ सीजन के देखते हुए कृषि विभाग किसान भाई लोग से मेड़ विधि से मक्का के बुआई करे के सलाह दिहल जा रहा बा। विभाग के कहना बा कि यह आधुनिक तकनीक यानी रिज एंड फरो मेथड जौन बाटे, एकरा के अपना के किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकेलन। जिला कृषि पदाधिकारी बतौलन कि रोहतास जिला के कई इलाकन में बारिश के दौरान जौन बाटे जल जमाव के समस्या गंभीर हो जाता, जमना से का होता कि मक्का के फसल प्रभावित होता। ऐसन में मेड़ विधि किसान लोग खातिर काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा बा। तो लोग सलाह दे रहा बा कि मतलब मक्का के खेती अब किसान भाई लोग मेड़ विधि से कर से। तो देखी तो रहल खबर, देखते
0: बिल्कुल बिल्कुल बढ़ुए। तो खबर ये बढ़ुए 25 मई के बाद लागी लागी धान के बिचड़ा, यानी कि गेहूं के कटने के बाद खरीफ खातिर धान के बिजड़ा डाले के तैयारी जोर शोर से खेत में चल रहा बा। खेत के जुताई भी हो रहा बा, और जिला के अलग अलग भाग में बिचड़ा खेत के सिंचाई यहाँ पानी के व्यवस्था बा, सिंचाई करके खेत के जुताई के काम शुरू कर देले बा। किसान लोग के कहना बा कि 25 मई के बाद से बिजड़ा लागे के शुरू हो जाला, लेकिन मौसम के मियाज एकर गति धीमा बढ़ुए, यानी कि जैसे हमने गर्मी बा
1: गर्मी के चलते
0: एमें बीज 25 के बाद उम्मीद कम बढ़ुए 25 के, लेकिन रोहिणी के बाद एकरा में तेजी आ जाए, चूँकि नोहरी नक्षत्र में उगे वाला बीज समय से तैयार हो जाला,
1: हाँ।
0: और जकरा से उपज भी बढ़िया होला।
1: 25 मई से रोहिणी नक्षत्र चढ़ भी जाला, तब हमें आदमी शुरू करी हन। आ देखें ई तो बड़ा बढ़िया समाचार रहल, लेकिन अब हमनी के तनी जानल जाओ एगो भेंट वार्ता के माध्यम से

0: कि मतलब धान के नया प्रभेद के बारे में।
1: देखिए जहाँ नया प्रभेद के बात कल ही धान के
0: जी जी,
1: तो उसमें बहुत से प्रभेद नया नया आयल बढ़ू और एकर जानकारी अगर हमनी के कई जाओ आ करके अगर रोपल जाओ किसी विशेषज्ञ से
0: हाँ हाँ
1: तो और बढ़िया रही। तो विशेषज्ञ बनी
0: डॉक्टर शशांक शेखर सिंह आ यहाँ से बातचीत करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी, तो जाने की यहाँ लोग के बातचीत से कि मारा कैसे खेती करें।
1: जी जी जी,
2: श्रोता सभे धान का बीया डाले का समय हो गइल बा। यह समय नया नया प्रभेद आ रहल बानी सन। बहुत सारा किसान लोग अब समय का परिवर्तन का साथ नया बीज ले रहल बाना, नया प्रभेद ले रहल बाना। हर साल कृषि वैज्ञानिक लोग नया नया प्रभेद ला रहल बाना ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके कम समय में कम जमीन में। तो कौन कौन नया प्रभेद आइल बानी सन, एकर चयन कैसे कई जाओ आ कौना भूमि में केह तरह का हमनी के प्रभेद लगावल जाओ, एकरा बारे में पूरा जानकारी देवे खातिर आज हमारा संगे बानी डॉक्टर शशांक शेखर सिंह, यहाँ का सहायक प्राध्यापक बानी शस्य विज्ञान कृषि विभाग गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार रोहतास। एक तो यहाँ का बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले तो ये बताई कि जो नया प्रभेदन का हमनी का चयन काहे कई जाओ।
3: वर्तमान समय में जैसे जनसंख्या बढ़त बा तो सबके भोजन देहल बहुत ही महत्वपूर्ण काम बा आज के। आई पूरा दरमदार किसान पे और कृषि वैज्ञानिकन पे आके टिक जाला। तो एक स्थिति में अमन के चाहिए कि बढ़िया बढ़िया प्रभेद हम लगाएं जिससे बढ़िया उपज मिल सके हमके।
2: जी जी,
3: तो बढ़िया उपज कैसे मिली, जब हमार अच्छा प्रभेद रही और उ प्रभेद सही समय पे लगावे के पड़ी। तो कई ऐसा अमन का प्रक्रिया करनी जा धान का प्रभेद लगावे समय और धान का प्रभेद लेबे समय भी बहुत सावधानी बरते के चाहिए। उ चीज कई चीज पे वो निर्भर करेले, क्षेत्र के आधार पे, जमीन के आधार पे, कई चीज हम आप आगे आपके विस्तार से बताई।
2: अच्छा, आप एक चीज बताई हमारा कि जैसे हमने का ट्रेडिशनल जो पारंपरिक प्रभेद रही यहाँ सर
3: जी,
2: आई नया प्रभेद आ रहा बानी सन
3: जी,
2: तो कई जगह तो ये कहल जा रहा बा कि नहीं अपना पुराना जो प्रभेद बानी सन, चूंकि ओकर स्वाद बढ़िया रहते हुए पौष्टिकता ज्यादा रहते हुए ओकरा के भी आज के समय में संरक्षण का बात हो रहा बा। आ दूसरा तरफ बात हो रहा बा कि नया प्रभेद लगावल जाओ, तो रौरा हिसाब से ओकरा में कितना संतुलन रखे के चाहिए हमनी के।
3: एगो ठीक बात कहनी है आपकी, जो पहले के प्रभेद रहे सर उनके संरक्षित भी कैल बहुत जरूरी है। काहे कि उनमें जवन पोषण स्तर रहे ओकर जब आ मतलब खराब से खराब मौसम में भी कुछ उपज दे देवे ये तो बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन ओकर एक पक्ष ये भी बा कि मौसम परिवर्तन होत बा, जलवायु परिवर्तन होता आ जलवायु परिवर्तन का सीधा असर खेती पे पड़ेला। पहले का होके कि रोहिणी नक्षत्र में आपका प्रभेद बिया पड़ जाए करे, आज पहले बुन्नी पड़ जाए बारिश हो जाए, आज का स्थिति बा तो तरी मौसम परिवर्तन होता जलवायु परिवर्तन होता ओकर ही अनुसार भारत का वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक ये विषय पे बड़ा जोर देना कि वर्तमान समय में हमार जवन जलवायु ओकर ही अनुसार हम ऐसा प्रभेद विकसित करें वो क्षेत्र के अनुसार, जैसे बिहार क्षेत्र है उत्तर प्रदेश हो गई तो वो जलवायु के अनुसार वहाँ जितनी वर्षा होत होके जमीन के प्रकार के अनुसार ऐसा प्रभेद भेद करें कि वो क्षेत्र में अधिक से अधिक उपज देवे।
2: जी जी, अच्छा अभी बताएं कि जो नयका प्रभेद बानी सर
3: जी,
2: तो कौना तरह का भूमि में आ कौन प्रभेद लगावे के चाहिए, वर्तमान में जो आयल बानी सन नया कृषि वैज्ञानिक लोग जो निकलले बा ओकरा अनुसार तनी बताएं कि कितना समय पर उपज देले, कितना दिन का वैरायटी है, आ कैसना जमीन में ऊंचा जमीन बा नीचा जमीन बा ऊसर जमीन बा काली मिट्टी बा या दोमट मिट्टी बा, यह में कौन कौन प्रभेद हमनी के लगावे के चाहिए।
3: बिल्कुल, बहुत ही मतलब बहुत ही सही प्रश्न आप कहनी है। देखिए बढ़िया उपज प्राप्त करे खातिर सबसे बड़ी चीज का होला, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होला कि वो होला कि भूमि की स्थिति का है आपकी। भूमि आपका समतल है कि ऊंच नीच है कि मध्यम जमीन है। दूसरा चीज होला कि

0: जल को उपलब्धता, धान कहा है कि बहुत अधिक पानी की जरूरत होने में, अगर पानी ना तो उतना उपज ना मिल पाई जितना ओकर उपज मिले के चाहिए ना। तो सबसे पहले हम ऊंची जमीन के बारे में बात करब, जहां तक से ऊंचाई पे जमीन बाटी सब ओकर खातिर केवन केवन प्रभेद करे के चाहिए। तो जैसे प्रभात एगो प्रभेद वेराइटी है, सहभागी, अभिषेक, बिरसा धान 101, बिरसा धान 102। ई बिरसा ई कृषि विश्वविद्यालय से ई प्रभेद कुल विकसित कैल गई बा। आई बिहार की क्षेत्र खातिर यहाँ की जलवायु के अनुसार बहुत ही उम्दा किस्म का प्रभेद मानल जाला। आ देखिए कम समय भी लेला, 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाए।
1: जी जी।
0: आ उपज भी सामान्य ठीक ठाक देला, मतलब 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
1: दे देला
0: अगर सही समय पे ओकर रोपाई हो जाए, सही समय पे ओकर प्रॉपर नियंत्रण हो जाए, मतलब देखभाल अगर हो जाए तो 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज कहीं ना गई बा।
1: जी जी जी। अच्छा जैसे मध्यम जमीन बा
0: जी, हाँ बढ़िया प्रश्न हो आपका। मध्यम जमीन खाती तो इनसे वही में अलग हो जाला, जैसे राजेंद्र कस्तूरी एगो प्रभेद आवेला, राजेंद्र सुहासनी, सरजू बावन बहुत ही बढ़िया वेराइटी है, बहुत ही बढ़िया प्रभेद सरजू बावन। तो इनसे दिनवा अधिक लेला, 130 से 135 दिन में पक के तैयार होला।
1: ये तो पुरान प्रभेद
0: लेकिन बहुत पुरान प्रभेद, लेकिन एक उपजवत ढेर बा ना, 45 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर सरजू बावन। हमारे तो PhD है वही पे बा।
1: जी जी।
0: तो बहुत ही बढ़िया, हम तो कहीं ना कि सरजू बावन लगावे के चाहिए। हाँ कुल मध्यम खातिर। आ नीची जमीन भी कहीं कहीं बा, तो वह खातिर किसानन भाइयन के हम सुझाव देब कि श्वेता, सोनम, सत्यम, साबौर, सुरभित, ई बढ़िया कुल प्रभेद मानल जाला।
1: जी, लेकिन हमनी के क्षेत्र में तो ज्यादातर किसान नाटी मंसूरी लगावेल।
0: जी, नाटी मंसूरी है, लेकिन नाटी मंसूरी के का होला कि ई जमुहार रोहतास और अगल बगल का जौन जिला बा ओकरी खातिर ठीक है। नाटी मंसूरी के संगे एगो दिक्कत होले कि तनी सा गिर जाले वो, हाँ लंबा होले तो नाटी मंसूरी लेकिन गिर जाले तो वो लंबा ड्यूरे समय का होला। आ कभी कभी गिर जाले की वजह से ओकर उपज और ये ओकर क्वालिटी मतलब गुणवत्ता में ह्रास हो जाला।
1: जी जी।
0: लेकिन बाकी नाटी मंसूरी तो बढ़िया है वेराइटी।
1: जी।
0: अच्छा उपज भी दे देला, ठीक है ठक दे देला।
1: ओकरा से मिलत जुलत पूसा भी कई थे वेराइटी निकल ले बा यूनिवर्सिटी से।
0: जी, असल नाटी मंसूरी का आप चर्चा के नहीं तो हम चर्चा कर देनी है कि नाटी मंसूरी तो बढ़िया, लेकिन लमहर लंबा ओकर पौधा ओखला के नाते से उमे थोड़ा सा उमे लाजिंग प्रॉब्लम आ जाले।
1: जी जी।
0: पौधा गिर जाए कर तनको आवा भाई पानी लागी तो पौधा गिर जाए, ये वजह से थोड़ा सा किसानन के परेशानी होला।
1: अच्छा,
0: ई कुल समस्या हो रहा ओकर संग।
1: जी जी। जैसे धान हम निकल गावत नहीं जाते, एक कई तरह का धान होने से सुगंधित बनस, संकर बनसन, तो वास्तव में हमनी के लगावे के का चाहिए ऐसे कि सुगंधित में तब उपज कम हो जाले, संकर में ज्यादा उपज होले, तो सुगंधित धान हमनी के कौन स्थिति में लगावे के चाहिए?
0: देखी सबकर मांग बा।
1: जी,
0: सुगंधितों का मांग है, संकरों का मांग है। कहे कि अपनी देश जानते हैं कि भारत में बहुत अच्छा स्तर पे धान के उत्पादन होला, तो जो सुगंधित धान वन से वो विदेश भी चल जाना, उससे अच्छा खासा हमारे किसान भाइयों के पैसा मिल जाला। हाँ, तो एक बिंदु के अगर ध्यान में रखल जाए हम लोग, तो सुगंधित धान लगैला से किसान का आय का स्रोत तनी बढ़ जाला, अच्छा दाम मिल जाए, आसानी से वो बाजार में बिका जाए, तो ये वजह से किसान भाइयों का आर्थिक पक्ष खातिर तो ठीके बा। लेकिन संकर धान का बात भई उसे का हो कि भाई किसान अपन घर परिवार बात कुल चीज देखे के बा, तो वो बाकी का कहला कि संकर धान भी बोवेला, कुछ सुगंधित भी बोई कुछ संकर धान भी दे, सबकर अपन उपयोगिता बा। संकर धान के संगे का होला तनी सा उपज ओकर अधिक होला, सुगंधित धान का उपज कम पड़ेला,
1: कम पड़ेला, लेकिन कीमत ज्यादा मिलेगी,
0: कीमत ज्यादा मिलेला, लोग आसानी से बिचा भी जाला। सबसे बड़ी चीज तो के रखे के ढेर दिन ना पड़ी, बस मालूम चले कि तोरी पहले सुगंधित दाना तोरी पहले फोने आवे लगी।
1: जी जी। अच्छा, अब एक चीज बा कि किसान भाई जाला कोनो दुकान में गई ना, भैया कौन बढ़िया बीज बा, दुकानदार कह के फुसला के दे दहलस, हैं तो उह समय बिया लेत समय कहां से लेबे के चाहिए, का सावधानी बरते के चाहिए, एकरा बारे में तनी हमरा किसान भाई लोग के बता।
0: बहुत बहुत

0: बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप प्रकाश डलनी है। का होला कि कौनो चीज के बढ़िया उपज प्राप्त करे खातिर ओकर किस्म बढ़िया होके के चाहिए, आधार बढ़िया होके के चाहिए, वो अच्छी जगह से विकसित कल गई लोग कुछ चीज का ध्यान रखे के चाहिए। जे में पहला चीज होला कि क्योंनी क्षेत्र में बोवे के है, अपनी क्षेत्र के हिसाब से वो किस्म का चुनाव करे के चाहिए
1: जी।
0: दूसरी बात, कहीं से ना बीज लेवे के चाहिए, कोई जौन जिला का जौन दुकान है सर, जौन सरकारी दुकान है सर, वही से प्रयास करके या कृषि विज्ञान केंद्र से या कोनो अनुसंधान केंद्र बा एग्रीकल्चर कृषि का आपके क्षेत्र में, तो प्रयास करके उहवें से बिया लेल बेहतर मानल जाला। अगर वो ना मिलत तब वो कहीं से ऐसा दुकान से आप लोग ले कि जहाँ से शहर में होके वहाँ का जे बेचत होके ओकर पहले कम से कम कृषि का डिग्री स्नातक स्तर का होके ओके कुछ तो जानकारी होके ओ से ले रहे के चाहिए
1: जी जी। एक समस्या और ही फंसे ले आकर जी कि कहीं कहीं की जौन यूनिवर्सिटी बनी सन या फिर संस्थान बना सन उ जगह फाउंडेशन बीज भी मिलेला आ संगे संगे सर्टिफाइड भी बीज मिलेला
0: जी,
1: तो किसान भाई के कौन बीज लेबे के चाहिए ए पर भी बड़ा दोहमत में रहना।
0: जी सही कहानी है। देखी फाउंडेशन बीज तक केहू के मतलब किसान भाइयन के उपलब्ध ना होला
1: जी
0: जी। बेसिकली होला कि फाउंडेशन बीज शोध खातिर रखल जाला
1: जी,
0: वो बेचे खातिर ना होला, वो रिसर्च सेंटर पे बस ओके रखल जाला
1: जी जी।
0: आ ओ पे शोध होला जैसे किसी वैज्ञानिक लोगों ने तो फाउंडेशन बीज सर्टिफाइडो भी लगभग लगभग ना उपलब्ध होला
1: जी जी।
0: ओकर बाद जो तीसरा नंबर वाला होला वो चीज किसान भाइयन के देहल जाले रिसर्च करके शोध करके
1: जी, उहे मिलेला
0: उहे मिलेला।
1: एक बार बीज खरीदला के बाद कितना दिन तक ओकरा के जौन बात बोल जा सकेला?
0: हाँ, एक बार बीज खरीदला के बाद अगर आप कृषि केंद्र से ले लें, अनुसंधान केंद्र से ले लें, तो के दो बार अधिकतम तीन बार ओके लगा लें
1: जी,
0: ओकरी बाद तनी से ओकर उपज में गिरावट आवे लगी
1: जी जी
0: जी।
1: तो इस तरह से हमनी के बीया खरीदे के चाहिए
0: ए तरह से जी
1: जी। तो शशांक शेखर सिंह जी आप अली आ इतना नीमन जानकारी देनी कि धान का नया प्रभेद कौन बानस कैसे खरीदे के चाहिए कहाँ से लेबे के चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद।

ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतरवर्ती खेती एवं रख रखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

0: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
1: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वहीं रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
1: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखिए झुन्नी बहिन, सब कुछ सुनला के बाद लाग रहल बा कि धान में हमनी के उन्नत प्रभेद के भी नया दौर के नया बात में जानकारी कर लिहल जाओ। तो धान के देखी उन्नत प्रभेद बा पूसा बासमती
1: जी जी,
0: 120 से 125 दिन में तैयार हो जाला। और पूसा बासमती में दू गो तरह के वेराइटी बा, 1121 और 1509। दूसर का कावेरी 468, CR धान 310, पूसा DST 1, BSL धान 88 बा। लेकिन बीज डाले से पहले एकरा के कार्बोलजाइम चाहे डाइकोडर्मा से एकरा को उपचारित जरूर कर दही, तब भेजा के हमने के फायदा हुई। हाँ। आ पैदा बढ़िया हुई।
1: तो बड़ा बढ़िया बात रहा। देखिए एगो चिट्ठी आयल बा जगत भाई, ये चिट्ठी आयल बा ग्राम पोस्ट ममरेजपुर थाना चेनारी जिला रोहतास से। लिखे वाला बानी सीटू उर्फ शैलेश तिवारी। यहाँ के लिखतनी कि हम मतलब गाय पल्ले बानी, आ गाय मतलब जैसे गर्भवती बाड़ी सन, तो उन्हीं के मतलब एक गर्मी में कितना पानी देवे के चाही।
0: जी जी।
1: तो देखिए सबसे पहले तो सीटू जीरो सब रौरा के बहुत बहुत धन्यवाद पत्र लिखला खातिर। आ देखी गर्मी के दिन में औसतन 8 से 9 महीना के बीच के गर्भवती पशुअन के 70 लीटर से 100 लीटर के बीच में शुद्ध पानी के उपयोग मतलब मवेशी के देवे के चाहिए। इससे का होला कि पशुअन में इम्यूनिटी जन बाटे गर्मी के लेवल के पूरा करेला। आ समय समय पर गुड़ भी देवे के चाही, आ उन्हीं के नमक भी देवे के चाही, आ शुद्ध पानी जरूर देत रहें। ती तो रहल चिट्ठी के जवाब। आ देखी अब हमने के तनी एक नज़र चलत चलत मौसम पूर्वानुमान पर डाल लिया। तो कल का अधिकतम तापमान बाटे 42 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 27% आ न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 60%। आ देखी हवा के गति जौन बाटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले के संभावना बा। आ देखिए मौसम विभाग के तरफ से कोनो तरह के चेतावनी जैसे आंधी पानी ओला ये सब बाटे वज्रपात ये सब के कोनो तरह के चेतावनी नहीं है।
0: तो समय समाप्त हो गई।
1: हाँ
0: चले के चाहिए। चलो चलो सब श्रोता भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार।
1: तो चले चले के बेरा में सब श्रोता भाई बहन लोग के झुन्नी बहन के तरफ से

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। आइए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती फिल्म के गाने से। आवाज़ें मोहन राठौर और उदित नारायण की हैं। प्यारे लाल यादव हैं गीतकार और संगीतकार हैं राजेश रजनीश।

गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहन राठौर और उदित नारायण की आवाज़ों में। और अब आइए सांझ गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएं साजन चले ससुराल फिल्म का एक गीत, उदित नारायण और खुशबू जैन की आवाज़ें हैं। गीतकार एक बार फिर से प्यारे लाल यादव और संगीतकार इस बार हैं अशोक कुमार दीप।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता और सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल और सेवा का प्रचार,
0: स्थानीय और देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
1: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान,
0: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
1: डायल करें 8700014242।
0: नंबर फिर लिखी 8700014242।

सांझ गीत कार्यक्रम में जिन फिल्मों के आप गाने सुने वो फिल्में थीं गंगा यमुना सरस्वती, साजन चले ससुराल और देसवा।

और इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

4 MHz पर। समय मिलाइए, शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
1: नमस्कार, मैं हूं राजेश, ममता का आंचल ये कार्यक्रम है और आज इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या साधारण बीमारियां अगर हों तब भी बच्चा नहीं होता है। हमने कहा कि आज इस कार्यक्रम ममता का आंचल कार्यक्रम जो है उसमें ये चर्चा करेंगे कि क्या साधारण बीमारी अगर हो जाए, जैसे हाँ बता देते हैं, जैसे थायराइड, चीनी, मोटापा, इस तरीके की बीमारी अगर हो जाए तो क्या बच्चा होने में परेशानी होती है या बच्चा नहीं हो सकता है। डॉक्टर श्रद्धा से आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, समय नहीं गंवाते हुए डॉक्टर श्रद्धा का नंबर बताते हैं और सीधे सीधे डॉक्टर श्रद्धा को बुलाते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर नोट करें, 9162562266 9162562266। ये नंबर है, इम्पोर्टेंट है आज का विषय बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाता ही नहीं है। डॉक्टर श्रद्धा ने आज ये चर्चा की और हम आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें पहुंचा रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर श्रद्धा आपका आज के हमारे इस ममता का आंचल कार्यक्रम जो है इसमें।
2: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी, आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है, क्या सामान्य यानी कि अन्य मेडिकल डिसऑर्डर्स भी कारण हो सकते हैं निसंतानता की। सबसे पहले तो जान ले निसंतानता क्या होती है। वैसे दंपति जो पिछले एक साल से प्रयास कर रहे हैं बच्चा और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है
1: जी।
2: ऐसे दंपति को निसंतानता कहा जाता है कि वो निसंतान दंपति।
1: हाँ, हाँ।
2: और ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज संभव है।
1: आज जो हमने ये हुक लाइन दिया है कि क्या साधारण बीमारियां भी बच्चा नहीं होने का कारण बन सकती हैं, जिसमें थायराइड को हमने पहले नंबर पर रखा, इसके बारे में बताइए थोड़ा।
2: थायराइड एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकता है। मेरे पास अक्सर ऐसे भी मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि मैं पूछती हूँ कि कभी थायराइड का टेस्ट हुआ, बोलते हैं हाँ हुआ तो है लेकिन हम दवाई नहीं खा रहे हैं।
1: अच्छा।
2: मैं पूछती हूँ क्यों नहीं खा रहे, तो बोलते हैं कि अगर खा लेंगे तो हमको आदत हो जाएगा और जिंदगी भर खाना पड़ेगा। लेकिन मैं साथ में ये बताना चाहती हूँ, अगर थायराइड है तो आपको दवाई अवश्य खाना होगा, क्योंकि इससे आपके शरीर में जो थायराइड की कमी है
1: जी,
2: उस दवाई से ठीक होगा। और अगर आप नहीं खाएंगे तो बहुत सारी दिक्कत होंगी, जिसमें से एक बड़ा दिक्कत है कि आपको बच्चा ठहरने में दिक्कत होगा, क्योंकि थायराइड वो हार्मोन है जिसके कारण अंडाशय औरत का अगर वो कम है तो अंडे का क्वालिटी घटता है
1: जी।
2: ना केवल अंडे का क्वालिटी घटता है, उस औरत में अंडे की जो संख्या होती है वो तेजी से घटते जाती है। यानी कि आजकल बहुत देखा गया है कि कम उम्र में ही एक औरत का मासिक खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका अंडा खत्म हो जाता है। और एक बड़ा कारण होता है कि थायराइड
1: जी,
2: तो थायराइड अंडा के एक औरत के अंडाशय में जो अंडा होता है उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करता है और उसकी संख्या को भी मेंटेन करता है। साथ ही थायराइड वो हार्मोन है जिससे हर महीने औरत में जो अंडा फूटता है उसमें थायराइड हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही जब बच्चा बनता है और नली से बच्चेदानी का जो नली से गर्भाशय में जब आता है और जब चिपकना होता है उस समय भी थायराइड ही हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है।
1: ये तो बहुत बड़ी बात है।
2: बहुत बड़ी बात है, इसलिए कोई भी बीमारी को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आपके आपको बीमारी है तो आप दवाई अवश्य लें। मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो बेहतर है आप थायराइड, चीनी का अपना जांच कराएं, मोटापा कम करें, बल्कि रूबेला जैसा भी बीमारी का अपना जांच करा लें। समझ रहे हैं? अगर आप आज जांच कराएंगे तो आपको जांच करा लेंगे और चीज को कंट्रोल में ले आएंगे तो बच्चा ठहरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, और सही समय पे इलाज कराएंगे तो आपको निसंतानता से भी जूझना नहीं पड़ेगा।
1: बहुत बड़ी बात आज की जो बात कही थी वो ये था कि साधारण बीमारियां भी

कभी कभी बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करती है, और खास करके वैसे दंपत्ति जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि थायराइड एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपको बच्चा नहीं होने के लिए। बड़े बुजुर्गों, अब आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई कि अब बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास भेजना है, और अब थायराइड की जांच भी करानी पड़ेगी और आपको बोलना पड़ेगा। डॉक्टर श्रद्धा से हमारी बातचीत चल रही है। IVF एक जो साधन है ना बच्चा प्राप्त करने का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है। आसानी से बच्चा हो जाता है, और बच्चा नहीं होना सिर्फ एक बीमारी है, और जैसा कि डॉक्टर श्रद्धा ने अभी अभी कहा था कि ये बीमारी है।

0: 5622669162562266। एक और बात, EMI पर इलाज होता है। EMI यानी टुकड़ों में पैसा देके आप अपना इलाज श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी, जहां से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जिनके सपोर्ट से वहां सारी व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं अपने पास के किसी चिकित्सक या निसंतान रोग विशेषज्ञ से भी आप दिखा लीजिए, कम से कम जाइए तो, और सही डॉक्टर के पास जाइए। फिलहाल डॉक्टर साहिब, आइए तो थायराइड की बात हो गई, चीनी शुगर इसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, अगर हम निसंतानता के बारे में बात करें और डायबिटीज के बारे में नहीं बात करें तो फिर ये बेईमानी होगी सबके साथ। डायबिटीज तो आप सबो को पता होगा, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है।
0: जी, जी।
1: और इसका भी बहुत सारा शरीर के बहुत सारे अंग पे असर पड़ता है। चूंकि मैं निसंतान रोग विशेषज्ञ हूँ तो मैं निसंतानता के बारे में ही बात करूंगी।
0: जी।
1: सुगर जो होता है ये प्रेगनेंसी में काफी दिक्कत कराता है। औरत में तो दिक्कत कराता ही है, पुरुष में भी दिक्कत कराता है।
0: जी।
1: पुरुष में जो है वो धात, कहते हैं धात पतला हो रहा है।
0: जी।
1: एक्चुअली धात पतला होने का क्या मतलब होता है, जो शुक्राणु बनते हैं और जिसको उसको जिस रास्ते से आना होता है
0: जी,
1: उस रास्ते से नहीं, वो उल्टा चला जाता है।
0: अच्छा।
1: और फिर वो उसके कारण धात पतला होने लगता है। और आप समझ सकते हैं इसके साथ, इसके कारण पुरुष निसंतानता बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है।
0: अच्छा, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में ये समस्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जरूरी है आप सही खान पान करें, जंक फूड से दूर रहें, रोज व्यायाम करें और शुगर का इलाज कराएं। कोई दंपति जब इलाज के बाद उनको बच्चा, जिसमें दंपति खासकर औरत को अगर डायबिटीज हो और इलाज के बाद बच्चा ठहर भी जाता है
0: जी,
1: तब भी वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क होता है। यानी कि उस औरत को अधिक संभावना होती है कि मिसकैरेज, बच्चा खराब होने का। उस बीमारी में औरत का रक्तचाप बढ़ सकता है
0: जी,
1: बच्चे को खून कम जा सकता है, समय से पहले डिलीवरी कराना पड़ता है और कभी कभी अचानक से बच्चा पेट में खराब भी हो सकता है।
0: जी, जी।
1: तो ये सारा सुनने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन अगर आप शुगर कंट्रोल कर लेती हैं या बच्चा प्लान करने से पहले ही आपने अगर शुगर कंट्रोल कर लिया है
0: जी,
1: तो आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चलेगा और इनमें से कोई भी बीमारी आपको नहीं होगा,
0: कोई भी बीमारी नहीं होगी। आज विशेष बातों पर चर्चा हो रही है और आई थिंक कि पहली बार इस कार्यक्रम में साधारण बीमारियों को लेकर डॉक्टर श्रद्धा बात कर रही है, क्योंकि ज्यादातर समय आप इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, जिसमें दो की चर्चा अभी, थायराइड की चर्चा और शुगर की चर्चा हुई, अभी और भी बीमारी आएगी जो आप नजरअंदाज कर देते हैं लाइफस्टाइल ठीक नहीं होने की वजह से या आपकी अपनी वजह से, लेकिन वो आपके लिए समस्याएं क्रिएट कर देता है। बहरहाल ये जानकारी हम दे दें वैसे दंपतियों के लिए कि श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी की तरफ से ये कार्यक्रम ममता का आंचल हम लेकर आ रहे हैं। और IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत आसान है, ये एक बीमारी है, अगर इससे आप निजात पालें तो आप भी माँ बन सकती हैं, आप भी बाप बन सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, 9162562266 9162562266। चुप्पी को तोड़ना है अब, हाँ, संकोच नहीं करना है और इस नंबर का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आप चर्चा करती रही हैं पहले भी ओबेसिटी की, मोटापा की, है ना, आज थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे ये रोकता है संतान के लिए।
1: बिल्कुल, मोटापा अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं लोग कि ये भी कारण हो सकता है बीमारी का।
0: हाँ।
1: मोटापा भी एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है।
0: हाँ।
1: खासकर भारत में आजकल, बल्कि वेस्ट में, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं और वो लोग रोज सुबह सुबह उठ कर के व्यायाम करते हैं, कोशिश करते हैं अपना वजन सही मेंटेन कर सके।
0: जी, जी, जी।
1: बल्कि लेकिन हमारे देश में, जहाँ कि हम वो देश हैं जहाँ हमारे यहाँ योगा की मतलब
0: जननी है,
1: जननी,
0: हाँ,
1: जननी योगा हमारे ही देश से शुरू हुआ,
0: पूरे विश्व में
1: गया। हाँ। लेकिन हमारे देश के लोग ही इसको भूलते जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: और उसका फलस्वरूप ये है कि लोग में मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापा का भी बहुत सारा असर होता है, शरीर के बहुत सारे अंग पे इसका असर होता है
0: जी।
1: लेकिन एक सबसे बड़ा असर जो होता है वो प्रेगनेंसी पे होता है, यानी कि औरत

0: अगर औरत, ना केवल औरत, पुरुष भी, अगर उनका वजन ज्यादा है, जिसको हम लोग BMI बोलते हैं, अगर 30 से ज्यादा है तो उस औरत को बच्चा ठहरने में दिक्कत होता है। उस औरत के शरीर में कितने सारे हार्मोन्स यानी कि केमिकल्स बनते हैं जिसके कारण उस औरत में अंडा नहीं बनता है। और अगर ये तो सब जान, अब इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सब लोग जान चुके हैं कि अगर औरत में अंडा बन के फूटेगा नहीं तो बच्चा कैसे ठहरेगा
1: ही नहीं। हाँ।
0: तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण निसंतानता भी बढ़ते जा रही है। अगर औरत और पुरुष दोनों जागरूक हो जाएं, ना केवल पुरुष औरत पे सवाल उठाए कि तुम्हारा वजन ज्यादा है इसलिए बच्चा नहीं ठहर रहा है, पुरुष भी मिलके मदद करे, यानी कि पति और पत्नी दोनों मिलके अगर व्यायाम करते हैं, सुबह सुबह टहलने जाते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करते हैं, मोटापा कम करते हैं, जंक फूड्स खाना बंद करते हैं, रोज दिन फल सब्जी का अगर सेवन करते हैं
1: जी,
0: तो आराम से मोटापा कम हो जाएगा और ऐसे दंपति में बच्चा ठहरने में कम से कम दिक्कत नहीं होगा। और PCOD जैसी बीमारी, जो ये भी महामारी, ये भी भारत में महामारी की तरह फैलते जा रही है, ये भी कम हो जाएगा।
1: कुल मिलाकर कहें कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, खान पान ठीक कर लें और तरीके से जिंदगी को लीड करें, खुश रहें, फैमिली के साथ रहें, तो मामला सुधर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, निसंतानता का इलाज क्या क्या है?
0: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था बताना। हाँ। क्योंकि आज हम निसंतानता क्या होता है ये भी बताएं, और सामान्य जो बीमारी है
1: जी,
0: वो भी कारण हो सकते हैं निसंतानता के।
1: हाँ।
0: जो इलाज है निसंतानता का, सबसे पहले हम लोग दवाई से शुरू करते हैं
1: जी।
0: पुरुष और औरत दोनों का कुछ बेसिक जांच करते हैं, कहाँ दिक्कत है, अगर वो दिक्कत पकड़ाता है तो उस चीज का इलाज करते हैं, नहीं तो फिर कुछ गोलियां देते हैं। 70-80% तो मेरे यहाँ ऐसे दंपति होते हैं जो वो गोलियों से ही उनको ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनको ये दवाई काम नहीं कर पाता है तो फिर हम लोग छोटे छोटे प्रोसीजर्स जैसे कि IUI करते हैं
1: जी,
0: या फिर दूरबीन जांच करते हैं, अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग करते हैं। बहुत लोग को इनसे भी बच्चा ठहर जाता है। लेकिन अगर जिनको इनसे बच्चा, इस चीज से भी बच्चा नहीं ठहरा, तो वो जान ले कि अब उनको IVF की जरूरत है। सही समय पे IVF करा लें, अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि IVF का भी सक्सेस रेट तभी बेहतर हो सकता है अगर आपने सही समय पे इलाज करा
1: जी,
0: लिया
1: जी।
0: तो वो सही समय जो गोल्डन आर है उसको आपको समझना होगा, पकड़ना होगा, और सही समय पे इलाज करने से आपका सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा। बसरते कोई दंपति जिसका शादी का 3-4 साल 5 साल ही हुआ है, अगर वो समझ जाता है कि अब उसको बहुत दिक्कत है और अगर उसको IVF की जरूरत है, और अगर वो करा लेता है तो उसको बच्चा ठहरने की चांस 70-80% होती है। बनस्पत उस दंपति को जो पिछले 20 साल से निसंतानता से जूझ रहा है, और सही समय पे बच्चा हो जाना वो भी बेहतर होता है, क्योंकि उससे जितना स्ट्रेस होता है वो खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इस वक्त समय नहीं है कि ज्यादा बातचीत हो सके। फोन कीजिए, खूब फोन कीजिए, सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, और फिर उसको अपनी जिंदगी में उतारिए। बड़े बुजुर्ग भी ख्याल रखिए अपने बच्चों का, और जो चीजें कही गई हैं उस पर अमल कीजिए। IVF बच्चा प्राप्त करने का सबसे सशक्त साधन है, माध्यम है। नंबर नोट कीजिए डॉक्टर श्रद्धा का, 9162562266, 9162562266। थैंक यू श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लोगों के लिए लाने का मौका दिया। तो चलते हैं डॉक्टर श्रद्धा, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4।
3: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। गुड इवनिंग रोहतास में आप जानते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। तो आइए आज सबसे पहले चर्चा करते हैं जिला कैमूर की, और बात करते हैं गर्मी की। भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए

दोस्तों, कैमूर जिले के सभी विद्यालयों में 30 मई तक शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। कैमूर जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान एवं भीषण गर्मी लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आम जन विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कैमूर भभुआ श्री नवीन कुमार सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को कक्षा 12 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 30/5/2026 तक प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 22 मई 2026 से प्रभावी होगा। हालांकि विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यक कार्यों का निष्पादन करेंगे।

और बात कैमूर की ही है कि टीकाकरण अभियान में कैमूर जिला राज्य में तृतीय स्थान पर HPV में पाया गया है। ये विस्तार से बात कर लें इस पर। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा दिनांक 24 मार्च 2026 से प्रदेश की सभी 14 वर्ष आयु वर्ग की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने हेतु HPV वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव का शुभारंभ किया गया है। उक्त राज्यव्यापी अभियान को सफल बनाने हेतु जिला पदाधिकारी कैमूर के नेतृत्व में कैमूर जिले के सभी प्रखंडों में व्यापक स्तर पर HPV टीकाकरण मेगा ड्राइव संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप आज कैमूर जिला पूरे बिहार में तृतीय स्थान पर पहुंच गया है। जिले ने निर्धारित लक्ष्य 16,402 के विरुद्ध अब तक लगभग 99% यानी 16,164 उपलब्धि प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि जिले के सिविल सर्जन, DPM, स्वास्थ्य कर्मियों, ANM, आशा कार्यकर्ताओं, विद्यालय प्रशासन एवं आमजन के सहयोग का परिणाम है। अब बात दुर्गावती की कर लेते हैं। दुर्गावती में बाल श्रम के विरुद्ध की गई है कार्रवाई। होटल से 5 बाल श्रमिक विमुक्त, नियोजक पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज दिनांक 23 मार्च 2026 को श्रम संसाधन विभाग कैमूर के तत्वाधान में बाल एवं किशोर श्रम प्रतिशोध एवं विनिमयन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रम रोकथाम एवं बाल श्रमिक विमुक्ति हेतु विशेष धावा दल अभियान चलाया गया। श्रम अधीक्षक श्री चंदन कुमार द्वारा गठित जिला धावा दल ने दुर्गावती प्रखंड क्षेत्र में सघन निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान संचालित किया। धावा दल का नेतृत्व श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दुर्गावती श्री अजितेश कुमार तिवारी ने थाना प्रभारी श्री गिरीश कुमार के सहयोग से किया। अभियान के दौरान दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की गहन जांच की गई। इसी क्रम में NH2 के उत्तर दिशा स्थित करणपुरा के राजगीर होटल प्रतिष्ठान में 5 बाल श्रमिक कार्यरत पाए गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से विमुक्त कराया गया। विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों में 3 बच्चे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के निवासी हैं, जबकि 2 बाल श्रमिक कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड का रहने वाला है। सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए दादर स्थित बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म का ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
4: कैमूर जिले में जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा भी हुई। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन रोहतास के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव 2026 के दूसरे दिन फजलगंज स्टेडियम सासाराम सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो उठा। महोत्सव के अंतिम दिन आयोजित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय एवं बाहर से आए कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और अब इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम, माफ कीजिएगा, गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:25 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल के तहत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में AI के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय सीनेट की वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित। और दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतास का डेहरी 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय आज देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने नव नियुक्त कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने का यह प्रयास है।
2: हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे और उसी के तहत हर साल मेला लगाई जा रही है। आज कई एक जगहों में मेला लगी है, हजारों लोगों को आज नियुक्ति पत्र बटे हैं। गया का सौभाग्य है कि दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने देश भर के युवाओं को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं से किए वादे पूरा कर रही है।
3: रोजगार मेला के तहत आज देश के 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र दिया गया है। केंद्र सरकार ने घोषणा जो की थी उसका अनुकूल मैं देख रहा हूँ कि लगातार समा मतलब है जाकर और उसमें 51,000 से अधिक लोगों को नौकरी दी जा रही है, रोजगार दिए जा रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जो वादा किया बिहार देश के वासियों से उस पर पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना बधाई देते हैं।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि युवा शक्ति, स्टार्टअप और नवाचार के बल पर बिहार डिजिटल क्रांति का अग्रणी राज्य बनेगा। श्री चौधरी ने पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित 2 दिवसीय AI समिट का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
4: लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो या हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है। और AI ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है और आगे भी IT डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम AI के स्तर पर खड़ा नहीं होगा।
0: श्री चौधरी ने कहा कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना और युवाओं को कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के AI विशेषज्ञ, स्टार्टअप, डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में

0: छात्र शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। श्री चौधरी ने अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित बक्सर के प्रथम सांसद महाराजा कमल सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब के IIT रोपड़ के 60 चयनित युवा बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर IIT रोपड़ के चयनित युवाओं का जत्था पहुंचा। IIT पटना के नोडल अधिकारी डॉ. सतीन्द्र कुमार और कृपा शंकर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने खुशी जाहिर की।
2: मैं दूसरी बार बिहार आई हूँ। मैं पहले पटना साहिब जाके आई थी, तब मैं काफी छोटी थी, पर ये एक्सपीरियंस अच्छा है। कमिंग फ्रॉम IIT रोपड़ इन अ ग्रुप विद स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द कल्चरल हेरिटेज,
1: युवा संगम कार्यक्रम के तहत बिहार दौरे पर आए प्रतिनिधियों को राज्य की सांस्कृतिक विविधता, परंपरा और सामाजिक जीवन से अवगत कराया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं नंदिनी।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा दिए जाने की घोषणा की है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हर वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पारदर्शी होगी। महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिले के प्रखंड के पंचायत में होगी। पुरुष शिक्षकों का गृह जिला के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला किया जाएगा। सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से की जाएगी। समाचार कक्ष से रजनीकांत चौधरी।
0: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बोर्ड कार्यालय में परीक्षा परिणाम जारी किया। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,711 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जबकि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,450 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ऊर्जावान कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। श्री नवीन ने प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल समापन सत्र में शामिल होंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि की गई है। बिहार में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार औरंगाबाद, गया, भभुआ, बक्सर, अरवल, जहानाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में

0: गर्मी के प्रकोप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी अधिकतम पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवा के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में आज शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट की आज संपन्न वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, छात्र छात्राओं को छात्रावास की बेहतर सुविधा तथा वाचनालय और पुस्तकालय को आधुनिक बनाने संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और जारी कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर विधान पार्षद नीरज कुमार समेत सीनेट के अन्य सदस्य और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। नीरज कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बैठक के दौरान हुई चर्चा के बिंदुओं की जानकारी दी।
2: सीनेट में छात्र शिक्षक कर्मचारियों संवाद का माध्यम, उनका प्रोन्नति, मातृत्व अवकाश, कर्मचारी संघ के नेता का स्थानांतरण, छात्र नेता जो बच्चे पीएचडी के लिए दूसरी मांगों के लिए है, हम लोगों ने अनुरोध किया है कि कुलपति महोदय इनसे वार्ता करके समस्या का निदान करिए।
1: बैठक के दौरान परिसर के बाहर आईसा, AISF और अन्य छात्र संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सीनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य में किए जाने वाले योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: भाकपा माले ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय और नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 24 मई को पटना में विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर लोगों की असली समस्याओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। बेगूसराय के बरौनी रेलवे स्टेशन पर टाटानगर थावे एक्सप्रेस की एक बोगी से पुलिस ने 52 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं जिले के लाखो थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। नवादा के कृष्णा प्रसाद स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया GMCH अस्पताल रोड में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और 1 नगर निगम कर्मचारी घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में AI के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय सीनेट की वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित। और दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतास का डेहरी 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सहरसा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी संवाददाता आरती कुमारी।
1: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहरसा जिले के सभी 10 प्रखंडों के चिन्हित स्थलों पर सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इस शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने आम जनों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, शिकायतों एवं आवश्यकताओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली। लोगों ने भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों को मंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान मिथिलेश तिवारी ने विभिन्न शिविरों का निरीक्षण भी किया। मंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक महीने में 2 बार शिविर लगाए जाएंगे, जिससे जनता को ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सहरसा जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति स्थिति सामान्य बनी हुई है। गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से होम डिलीवरी सेवा प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराकर या पैनिक में आकर घरेलू गैस सिलेंडरों की अनावश्यक बुकिंग ना करें। जिले में सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने तथा नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सहरसा जिले के महिषी अंचल कार्यालय में कार्रवाई करते हुए टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में एक राजस्व कर्मचारी और उसके निजी सहयोगी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी पर रसीद काटने के नाम पर 16,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। सहरसा पुलिस द्वारा कोशी क्षेत्र में जनवरी 2026 से 8 मई 2026 तक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 448 तस्करों एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस दौरान लगभग 2,92,64,000 रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ एवं शराब बरामद किए गए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें

0: भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत चानन पंचायत में जीविका हाट का उद्घाटन किया गया। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह जीविका हाट सप्ताह में 2 दिन संचालित किया जाएगा, जहां जीविका दीदियां ताजी सब्जियां और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय करेंगी। बीते दिनों अपर समाहर्ता निशांत कुमार ने सहरसा जिला एथलेटिक्स मीट के 41वें संस्करण का उद्घाटन मशाल प्रज्वलित कर किया। इस प्रतियोगिता में जिले के 370 खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में भाग लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 10 से 13 जून 2026 तक पटना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे सहरसा जिले की हलचल। सहरसा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रही थी हमारी संवाददाता आरती कुमारी।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद।

0: शाम के 7:50 हुए हैं और यही वो वक्त है जब हमारी आपसे मुलाकात होती है, उस प्रोग्राम को लेकर जिसे आप खुद सजाते हैं, आप संवारते हैं और आप ही सुनते हैं। जी हाँ, आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं हेलो मन पसंद। न जाने क्यों आती है याद आपकी, चुरा ले जाती है आँखों से नींद हमारी। अब यही ख्याल रहता है सुबह शाम, कब होगी आपसे मुलाकात हमारी। तो दोस्तों, ये मुलाकात का वक्त हो चुका है और इंतज़ार का वक्त अब ख़त्म हो चुका। हम हैं आपकी खिदमत में आज, आपका अपना ओम प्रकाश। नमस्ते। फ़ोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। देखते हैं आज कौन कौन से हमारे श्रोता और किस खूबसूरत गानों से इस कार्यक्रम को सजाया है। तो आइए लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो मनपसंद
1: जी। हेलो मनपसंद सर, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, कौन साहब और कहां से बोल रहे हैं?
1: सर मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया जी।
1: जी सर।
0: तो आज कौन सा गीत, आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले तो मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: जी हमें भी उतनी ही खुशी हो रही है आपसे बात करके सिसोदिया जी। और आप आकाशवाणी सासाराम के लिए अपने बहुमूल्य समय में से कुछ लम्हे निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा आकाशवाणी सासाराम से, है ना?
1: जी बिल्कुल, मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनते हैं ना हम आपके।
0: बिल्कुल सिसोदिया जी,
1: हो स्पेशल मिलता है और सभी राज्यों के केंद्र मतलब सुनने को मिल जाते हैं आकाशवाणी।
0: जी बहुत अच्छी बात है। और बताइए कौन सा फिल्म और किस गाने को आज आप अपने तमाम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल, फिल्म का नाम है कुर्बान और गाने के बोले देखा नीले झील किनारे, चंदा को आकाश को करे।
0: चंदा को आकाश को, देखा झील के किनारे। ठीक है, चलिए साहब आपकी पसंद पर अपने तमाम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: नमस्कार
0: जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? रमेश साहब कहाँ से बोल रहे हैं? बांका जिला से रमेश जी से हमारी बात हो रही है ना? ये बताइए रमेश जी कि आजकल आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं, ये बहुत अन्नदाता हैं आप, ये जानकर खुशी हुई। आजकल तो आप कुछ कुछ तो खाली होंगे, है ना? खेत से तो छुट्टी अभी मिली हुई है।

0: हाँ, ये तो करना ही करना है। तो रमेश जी, ये बताइए कि आज किस फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं और कौन सा गीत? हम आपके हैं कौन? जी, कौन सा गीत?
1: गाना गाता है तबला देके, हम तो आसम दिन वाले हैं।
0: अच्छा, चलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत।

हेलो मनपसंद जी, नमस्ते। और सर क्या करते हैं बक्सर जिला में? अरे अब आप भोजन के लिए के खेती करते हैं, आप अन्नदाता हो गए, अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, तो किसान हमारे सालों भर व्यस्त रहते हैं और ये समय है कि थोड़ा सा उन्हें इंटरवल मिलता है। सुदर्शन जी, आप

0: हेलो मनपसंद जी, नमस्ते।
1: हमारा नाम सुदर्शन यादव पड़ता है।
0: और सर, क्या करते हैं बक्सर जिला में?
1: पहले कपड़ा बनाता था मिल में, अभी खेती करता हूँ भोजन के लिए।
0: अरे, अब आप भोजन के लिए के खेती करते हैं, आप अन्नदाता हो गए, अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, तो किसान हमारे सालों भर व्यस्त रहते हैं और ये समय है कि थोड़ा सा उन्हें इंटरवल मिलता है। सुदर्शन जी, आप
1: जोड़े
0: जी जी जी जी जी तो आकाशवाणी सासाराम के सारे प्रोग्राम आप सुनते हैं और आपको पसंद आता है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। किस फिल्म का और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? मेहरबानी आपकी। जी बिल्कुल, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो मनपसंद जी,
1: हेलो
0: बोलिए कौन साहिबा बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मनपसंद, मेरा नाम सौम्या कुमारी है। मैं कंपनी सराय मोहल्ले से
0: सौम्या कुमारी जी बोल रही हैं, कंपनी सराय मोहल्ला सासाराम से बोल रही हैं। सौम्या जी फिलहाल करती क्या हैं?
1: रही हूँ। हाँ जी, अभी मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ।
0: क्लास 7 में पढ़ती हैं। इस बार अभी 7 में गई हैं या फिर 7 पास कर चुकी हैं? चलिए चलिए, अच्छे रैंक आए आपके पिछले क्लास के मुताबिक, और भी अच्छा पढ़ाई करें आप, ये दुआ है आकाशवाणी सासाराम की तरफ से आपको। और फिलहाल आप कौन सा गीत और किस फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं?
1: मेरे
0: मेरे महबूब मेरे सनम आप गाना सुनना चाहती हैं, तो चलिए आप तक हम आपकी ख्वाहिश पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और इसी तरह से आप आकाशवाणी सासाराम से जुड़े रहिए, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाली, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो मनपसंद जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: आप झारखंड से बोल रही हैं? आपका शुभ नाम?
1: जी, बहुत
0: शगुफ्ता।

0: ये आपकी प्रयास का परिणाम है कि कहते हैं ना कि मेहनत करते जाइए तो सफलता तो जरूर पाइएगा, है ना। आज आप सफल हो गई और हमें खुशी हुई आपसे बात करके, दोनों को खुशी हुई, ये बहुत अच्छी बात है। आप सगुप्ता जी करते क्या हैं? अच्छा, हाउस वाइफ हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया काम है। आप पूरे घर को संभाल के चलती होंगी, पूरे घर को सजाना, लोगों को खाना बनाना, खिलाना पिलाना, सब कुछ जिम्मेवारी तो आप ही पर होती है। जो हाउस वाइफ कहती हैं उनको हम
1: थैंक यू भैया।
0: दिल से प्रणाम करते हैं, और जैसे आप चाहेंगी आपका घर वैसा ही होगा, है ना सगुप्ता जी। और बताइए, किस फिल्म का गाना और कौन सा गाना आज आप सुनना चाहती
1: हमें
0: हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का गाना सुना दीजिए, हुई श्याम उनका ख्याल आ गया।
0: हुई शाम और उनके ख्याल आ गई ना। जी, जरूर हम आपकी ख्वाहिश आप तक पहुंचाएंगे अपने तमाम श्रोताओं के साथ। सगुप्ता जी, इसी तरह आप आकाशवाणी सासाराम से भविष्य में भी जुड़े रहें और अपने बहुमूल्य समय से कुछ लम्हे निकालकर हमें याद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो सर,
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: कृति
0: कीर्ति, क्या करती हैं आप आजकल?
1: घर में रहती हूँ सर, और आप तो जानते हैं ब्लाइंड हूँ मैं, प्रोग्राम में सारे सुनती हूँ। हाँ
0: अच्छा, आप सुन पाती हैं?
1: सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत पकड़ता है शाम के वक्त में।
0: अच्छा, तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई।
1: हाँ रेडियो सेट है सर, उसी से थोड़ा बहुत आता है तो सुन लेते हैं। दिल
0: अच्छा, किस फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? दिल फिल्म का कौन सा गीत? दिल फिल्म का वो गीत, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, बहुत हिट हुआ ये फिल्म भी और ये गीत भी बहुत, है ना? तो चलिए, आपकी पसंद तो बहुत ही बढ़िया पसंद है। आज लोग जब इस गीत को सुनेंगे तो बहुत खुशी होगी और हमें खुशी हुई बस आज आपसे बात करके। इसी तरह अपने बहुमूल्य समय में से कुछ लम्हे निकालकर आकाशवाणी सासाराम से आप जुड़ी रहें, बस यही मेहरबानी है और दुआ है ऊपर वाले से। आपकी ज़िंदगी आसान हो, खूबसूरत हो और अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी पूर्वक जिए। कीर्ति जी, फिलहाल आइए, सुना जाए आपके साथ बैठकर आपकी पसंद का दिल फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: जी सर, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं राजू कुमार मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ सर।
0: राजू जी, क्या करते हैं मुजफ्फरपुर में?
1: जी सर, मेरा सर काम रेडीमेड कपड़ा का दुकान है सर।
0: अच्छा, तो हम
1: और आपके कार्यक्रम में नियमित होता हूँ सर।
0: बहुत मेहरबानी, आकाशवाणी सासाराम से जुड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं, अभी आप अपने दुकान पर हैं या घर पर हैं?
1: नहीं सर, अभी दुकान पर ही है सर।
0: दुकान से ही बात हो रही है हमारी आप।
1: जी सर, जी सर, बोल रहे हैं क्या? जी
0: क्या बात है, क्या बात है राजू जी, आप तो बिल्कुल पकड़ लिए, और जैसे गिरेवान पकड़ लिया जाता है, आप आवाज़ से ही हमें पकड़ लिए। जी, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ राजू जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार सर। जो आपकी पसंद कार्यक्रम चलाए हैं बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी मैं कहूँ तो आप 90 के दशक से सर आकाशवाणी सासाराम में हैं।
0: जी, बिल्कुल सही आप पकड़े। फिलहाल आप आज किस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं राजू जी?
1: जी सर, क्योंकि हम कहना चाहें कि आपको भी ये पसंद गाना लगेगा, साजन की बाहों में।
0: साजन की बाहों में फिल्म का कौन सा गीत?
1: पूरब से चली पुरवाई की छम छम पायल बजे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत है, और सच मानिए ये गीत हमें भी उतना ही पसंद है जितना आपको। आपसे चंद बातें हम करना चाहेंगे। फुर्सत मिले कभी तो बैठकर सोचना, फुर्सत मिले कभी तो बैठकर सोचना, तुम भी मेरे अपने हो या सिर्फ सिर्फ हम ही तुम्हारे हैं।
1: क्या बात है सर, बहुत बहुत सर।
0: चलिए राजू जी, तो सुना जाए अपनी पसंद का।

तो अब इसी के साथ हेलो मनपसंद कार्यक्रम से आज अपने ओम प्रकाश को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। श्रोता दोस्तों, हर बुधवार को रिकॉर्डिंग की जाती है, वैसे तो हमारे तमाम श्रोता जानते हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता नहीं जानते हैं और हम चाहते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना दिल मांगे मोर, तो और भी चाहते हैं नए श्रोता हमसे जुड़ें और हम नए श्रोताओं के भी हो जाएं। इसके लिए हमें बताना होगा और हम बता रहे हैं कि हर बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रिकॉर्डिंग की जाती है और रिकॉर्डिंग का फ़ोन नंबर है, आप नोट कर लें, 0618421130। आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर से नंबर दोहरा दें, 0618422110। अब इसी के साथ हेलो मनपसंद आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इसका शेष भाग आप सुनेंगे शनिवार को शाम 7:50 पर। नमस्ते।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: इसी के साथ हेलो मनपसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 हुआ चाहते हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान

0: सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई, हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30 से 35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश

0: शर्तों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिलाइए, रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

0: रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहा बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: लोकधारा कार्यक्रम में श्रोता दोस्तों, आइए अब सुनते हैं नीलेश्वर मिश्रा की आवाज में ये भोजपुरी लोकगीत।

0: लोकधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राकेश को, और अब आइए सुनिए कुछ संदेश।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई

विंध्यवासिनी सिन्हा और सहेलियों को अभी आप सुन रहे थे, और अब इसी के साथ भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेश खिदमत है गज़ल का प्रोग्राम महफिल। शुरुआत करते हैं डॉक्टर मुख्तारुद्दीन के लिखे इस कलाम से, जिसके लिए आवाज़ दी है हरिहरन ने।

हरिहरन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे करार एल्बम का ये गज़ल। और अगली गज़ल हम आपको सुनवाएं कशिश एल्बम से, हमने चुना है, आवाज़ अनूप जलोटा की है। रानी मलिक हैं कलमकार और

0: इसे स्वर्गबद्ध किया है खुद अनूप जलोटा ने। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

अनूप जलोड़ा की गाई इन्हीं गज़लों के साथ महफिल कार्यक्रम अब यहीं मुकम्मल हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई

0: बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई, और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज ओटीटी की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली शाह।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थीं। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

0: दीवाना हो।
1: शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी, जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को

अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्यालय की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घाईवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

सैफ अली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, सैफ अली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में सैफ अली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के वीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच साठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी। ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

0: नाइन एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे शंकर माधवन की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी शंकर माधवन ने। और अब रसरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे आँखों में सपने लिए एल्बम का एक गीत। अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें हैं, मोहम्मद विजय हैं गीतकार और संगीतकार हैं नीलू निरंजन। लेकिन इससे पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

आंखों में सपने लिए एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें थी। वी विजय के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी नीलू निरंजन ने। अब आइए हम आपको सुनवाएं अब के बरस एल्बम का एक गीत सुनीता राव की आवाज़ में।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

नुसरत फ़तेह अली खां के गाए इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गानों का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गीत फिल्म के इस गाने से।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

आइए इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाएं मोहम्मद रफ़ी और लता की आवाज़ों में साहिर का लिखा एक गीत, जिसे स्वरबद्ध किया है मदन मोहन ने और फिल्म का नाम है लैला मजनू।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: चितपट तराने कार्यक्रम में अब आइए हम आपको सुनवाएं बागी फिल्म का एक गीत। अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। और अब इसी के साथ हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

कल हम आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर होंगे प्रातः 5:53 पर। हिंदी समाचार आप सुनेंगे प्रातः 6 बजे और प्रातः 6:05 पर विविध भारती का प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से हम प्रस्तुत करेंगे 7:30 पर कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। समाचार प्रभात हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:00। पसंद आपकी, आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे 8:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित 8:45 पर। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका की प्रस्तुति होगी 9:10 पर। हिंदी समाचार कल भी पूर्वाह्न 10 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल रविवार है, कल पूर्वाह्न 10:05 पर आप सुनते हैं नन्हे कलाकारों के लिए कार्यक्रम अंकुर। भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी की प्रस्तुति होगी पूर्वाह्न 10:30 पर। पूर्वाह्न 10:45 पर सुनिए भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार। वापिस स्टूडियो

आकाशवाणी सासाराम से हम शाम 5:05 पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आप सुनेंगे 5:10 पर। विज्ञान एवं पर्यावरण इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे 6:00। 5:05 पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांव घर। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत की प्रस्तुति होगी 6:40 पर। 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हम रिले करेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से 7:25 पर। 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा की प्रस्तुति होगी रात्रि 9 बजकर 15 मिनट पर सजेगी गजलों की महफिल। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग आप सुनेंगे रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर। आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने और रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजा चाहते हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ

0: सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान कालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi today. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the US perspectives on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for PAC Silica.
3: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. In the 19th edition of Rozgar Mela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government departments and organizations were distributed. The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of the next month, citing that the land was acquired for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry stated that the land